हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभु श्रीनाथ जी को हवेली संगीत के इस कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कलाकार हैं गोपाल ठाकुर।

चमन से भक्ति करने से हर विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख शांति के साथ सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। प्रभु के चरणों में शरण लेकर हम जीवन में नए आरंभ और समृद्धि का अनुभव करते हैं। कार्यक्रम की अगली रचना महेंद्र कपूर के स्वर में।

कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। अगली रचना अनूप चलोटा के स्वर में है।

समर्पण ही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। जो व्यक्ति अपने समर्पण से कार्य करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जगजीत सिंह की गाई हुई कार्यक्रम की ये अगली भक्ति रचना।

जहाँ प्रथम वंदन गणपति का होता है वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। आइए विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और सफलता के आधार भगवान गणपति की स्तुति करें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने हमारी दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुगम संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 6:50 पर, सुबह 9:30 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे दोनों ही चैनल एफएम रेडियो लेक सिटी और मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 12:00, दोपहर 1:45 पर, शाम 6:05 पर और रात्रि 8:00। शीर्षक गीत का समय रहेगा सुबह 10:00। शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 11:00।

सहेलियारी बाड़ी ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 1:05 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारा विशेष कार्यक्रम रिले दिल्ली से आप सुन पाएंगे दोपहर 3:55 पर। युवा साथी सुन पाएंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात, साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय संस्कृत पत्रिका और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे।

अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए सुने श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्रे, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समाधि आज ही देखने को मिले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला हगलई किसान भाई बहना ने नानू भाई रो घणो घणो राम राम सा। जून रा आणी महीना में किसान भाई खरीफ फसलारी वावणी री तैयारियां शुरू करे है। जटे खरीफ मक्का री अगर आपा बात करा तो अण में देरू पाकवा वाली किस्म जो है वंडी वावणी किसान भाई अणी टेम कर सके है। वणु पहला किसान भाई ने खेत में पलेवो कर लेनो चावे। जणु वर्का प्रारंभ वेते ही पहला ही खेत में भली भांति जो है ई मक्का ने स्थापित कर सके और वावणी रे 15 दिन रे बाद एक निराई भी वही जावे। शीघ्र पाकवा वाली मक्का री वावणी जो है अणी टेम किसान भाई बहना ने कर लेनी चावे। खरीफ रा मौसम में मक्का रे वाते खेत री तैयारी रे वाते भूमि में हेरों एक गहरी जुताई और 2-3 जुताई कल्टीवेटर ऊ कर देनी चावे। जुताई रे बाद पाटो लगाई ने खेत ने समतल कर लेनो चावे जणु की नमी सुरक्षित रहे। मक्का री खेती रे वाते दोमट मिट्टी ऊ लईने बलुई दोमट गहरी भारी गठन वाली मिट्टी जो है जणमें एक ही कार्बनिक पदार्थ री मात्रा उचित और जल निकास री पूरी सुविधा वे वह भूमि मक्का री फसल रे वाते हउ मानी जावे। लवणी और क्षारीय मिट्टी जो है मक्का री खेती रे वाते हउ नी रेवे है। खरीफ मक्का री खेती रे वाते परिपक्वता अवधि रे आधार पर अधिक उपज दे वाली बहुत सारी संकर प्रजातियां उपलब्ध है। मक्का री जल्दी पाकवा वाली संकर प्रजातियां जिस तरह की PEHM2, PEHM3, PEHM5, विवेक संकर मक्का 4, ये प्रजातियां 85-95 दिन में पाक जावे और अणा प्रजातियां ने सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्र में उगायो जा सके है। मक्का री पूर्णकालिक परिपक्वता प्रजातियां री अगर आप बात करा तो अणमें पूसा जवाहर संकर मक्का 1, गुजरात आनंद व्हाइट मक्का हाइब्रिड 2 MM9344, पूसा HM9 इम्प्रूव्ड, प्रताप मक्का 9, प्रताप कंचन 2, WC 236 ई प्रमुख किस्म है। अणि वर्गरी प्रजाति में 100 लेने 110 दिन में जो फसल है वह पाके है और प्रोटीन युक्त मक्का री जटे प्रजातियां री बात करा तो उनमें HQPM1, HQPM4, HQPM5, HQPM7, विवेक QPM9, शक्तिमान 1, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 ई प्रमुख किस्म है। अणा प्रजातियां ने किसान भाई वणा क्षेत्र में बोई सके जटे सिंचाई देने समय पे वावणी वे और फसल काल

में वर्षा जो है वह सुनिश्चित वही जावे है। जो किसान भाई मक्का री किस्म में बेबी कॉर्न रे बात है अगर खेती करना चाहे तो बेबी कॉर्न ले पूसा संकर 2, पूसा संकर 3, HM4A, BL42, G5414 ये प्रमुख किस्म है। और पॉपकॉर्न रवाते पर्ल पॉपकॉर्न एवं अंबर पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न रवाते प्रिया और माधुरी जो है वे उन्नत किस्म है। खरीफ मक्का में उचित संख्या 65,000 लेने 78,000 पौधा प्रति हेक्टर प्राप्त करवा रवाते 20-25 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टर ही आवश्यकता वे है। बीज उत्पादन रवाते पंक्तियों पंक्तियों और पौधे पौधरे बच्ची दूरी 60 लेने 75 और 12 लेने 15 सेंटीमीटर किसान भाई राख सके और बीज जो है वो 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर वावणी करनी चाहे। संकर बीज उत्पादन में संकर प्रजातियों में नर एवं मादारा बीज क्रमशः 2 और 4 पंक्तियों में बोया जावे। सामान्य स्थिति में वावणी हल रे पाछे कुड़ारे 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी है और पंक्तियों पंक्ति री दूरी अगेती किस्मा रवाते 45 सेंटीमीटर और मध्यम और देरु पाक वाली प्रजातियां में 60 सेंटीमीटर रखनी चाहे। पौध पौधरी दूरी अगेती किस्मा में 20 सेंटीमीटर और मध्यम और देरु पाक वाली प्रजातियां में 25 सेंटीमीटर ही रखनी चाहे। जटे खाद और उर्वरक की बात करा तो मक्का री भरपूर उपज लेवा वाते किसान भाई संतुलित उर्वरक रो प्रयोग उर्वरक री मात्रा मिट्टी रा उपजाऊपन और अन्य प्रबंधन कारका पर देखो निर्भर करे। तो किसान भाई बहना ने चाहे कि सबसे पहला अपने मिट्टी रो परीक्षण करावे और वनडे आधार पर ही अपनी मिट्टी में जनी उर्वरक की जरूरत वे वणी मात्रा में वणी उर्वरक की पूर्ति करनी चाहे। मक्का रे बात देखा तो आमतौर पर 120-150 किलोग्राम नाइट्रोजन 75 ग्राम फॉस्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दरू देनो चाहे। नाइट्रोजन री 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश री पूरी मात्रा वावणी रे पहला खेत में देनी चाहे। यदि मिट्टी में जीवांश पदार्थ री कमी वे तो वावणी लगभग 15-20 दिन पहला 6-8 टन प्रति हेक्टेयर दरों गोबरी खाद प्रयोग में करवाओ। किसान भाई बहना ने मक्का री फसल में 25% नाइट्रोजन री मात्रा कम कर सके है। शेष नाइट्रोजन 2 बार में बराबर मात्रा में टॉप ड्रेसिंग रे रूप में प्रयोग करनी चाहे। पहली टॉप ड्रेसिंग जब फसल घुटना तक री ऊंचाई बह जावे वनी टेम और दूसरी जड़ा निकलवारी टेम खेत में किसान भाई डाल सके। जड़ा क्षेत्र में पाछले साल ऐसा हैदान दिखाई देता वे वन में अंतिम जुताई री टेम 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर दरु मिट्टी में मिले बीज ने बोणो चावे। जटे मक्का री फसल में अगर सिंचाई री बात करा तो मक्का री पौध री प्रारंभिक अवस्था में सिल्किंग दाना पड़वारी अवस्था में पर्याप्त नमी री आवश्यकता वे। अड़ी टाइम यदि वर्षा नहीं वे तो किसान भाई सिंचाई करनी चाहे। सिल्किंग रे समय पानी नहीं मिलवाऊ कई की दाना कम बनेगा और वर्षा रे केड़े खेत में जल निकासी रो अच्छो प्रबंधन मेणो चाहे, नहीं तो पौधा जो है वे पीला पड़ जाएगा और मानारी बढ़वार जो है वह रुक सके है। जटे खरपतवार प्रबंधन री अगर आप बात करा तो मक्का री खेती में निरय गुड़ाई रो अधिक महत्व है। अंडे लारे लारे निरय गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण रे लारे जड़ा में ऑक्सीजन रो संचार वे अणु व दूर तक फैलने भोज्य पदार्थ ने एकत्र करने पौधा ने देवे। पहली निरय जमा वो 15-20 दिन रे केड़े करनी चाहे और दूसरी निरय 35-40 दिन रे बाद किसान भाई बहन ने करनी चाहे। जटे खरपतवार नाशीरी अगर आप बात करा तो एट्राजिन 50% WC 1.5-2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणनशील चूर्ण या पचे एलाक्लोर 50 cc 4-5 लीटर 600-800 लीटर पानी में गोल वणई ने वावणी रे दूसरे या तीसरे दिन अंकुरणु पहला उपयोग करे तो खरपतवार नष्ट वही जावे। और दूसरा खरपतवार नाशी एलाक्लोर अगर है तो 50 cc 4-5 लीटर मात्रा री वावणी रे तुरंत बाद अंकुरण रे पूर्व 600-800 लीटर पानी में मिले ने प्रयोग करे या पचे टोप्रामिजोन जो है 33.6% सक्रिय तत्व प्रति एकड़ या पचे टेम्बोट्रियोन 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ वावणी रे 20-30 दिन बाद 500-600 लीटर पानी में मिले ने छिड़काव करे। और यदि मक्का रे बाद आलू री खेती किसान भाई ने करनी है तो एट्रोजिन रो प्रयोग नहीं करे। तो अबार खरीफ फसला में खरीफ मक्का री अगर वावणी में किसान भाई अणी बातारो ध्यान रखेगा तो वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकेगा। और देखो घड़ी री आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो तो चाला सा आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने सदाबहार नगमे। पहली पेशकश अभिमान फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत था फिल्म मुकद्दर का, सिकंदर से आवाज़ थी किशोर कुमार की। सदाबहार नगमों की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम महबूबा।

ये गीत था फिल्म जख्मी से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत भूपिंदर किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गीत था फिल्म मोहब्बत से, आवाज़ें थी किशोर कुमार और साथियों की। सदाबहार नगमों का अंतिम गीत आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम शराबी।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुने आबोहवा।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस

0: जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई ये गजल।

पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने को हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार बस कुछ ही देर में।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इतना प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी

0: महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय। दैनिक

0: भुला दो बीता हुआ कल, भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल। हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा ये आने वाला कल। इसी नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: अमित।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और अमित, कल्चर पॉप सैटरडे में वीकेंड की शुरुआत में हम बात करेंगे विश्व शरणार्थी दिवस पर और आज की खास खबरों पर कुछ चर्चा, और फिर बात करेंगे T20 विश्व कप अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट्स पर।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में फोक एंड रूट्स में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक साहित्य में मेवाड़ का योगदान, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे मनोरंजन कक्ष सेगमेंट के अंदर पुराने गीतों का नया ट्रेंड, यानी कि जो रिमिक्स ट्रेंड आ रहा है उसे नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस विषय पर भी होगी कुछ खास बातचीत।
0: और लास्ट सेगमेंट जो अमित बताया नहीं, अवेयरनेस, जिसमें हम जानकारी देंगे अल नीनो का प्रभाव और मानसून पर क्या है, क्योंकि हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब आएगी।
1: बिल्कुल, और फिर मनोरंजन तो है ही हमारे साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।

0: उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। अमित, सभी लोग सौभाग्यशाली पैदा नहीं होते कि उन्हें सुरक्षित और सुखमय स्वतंत्रता का जीवन जीने का अवसर मिले। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जीने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा है। जी हां, आज है वीकेंड की शुरुआत में हम बात करेंगे विश्व शरणार्थी दिवस पर, जो आज यानी 20 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य और इसकी महत्ता क्या है, आइए जानें। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानवाधिकारों के उल्लंघन, प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर संकटों के कारण अपने ही देश को छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर के शरणार्थियों के साहस, संघर्ष और सम्मान को पहचानने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अपने परिवार, संस्कृति और पहचान से दूर होकर नया जीवन शुरू करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल विद्या, विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इससे पहले ये जो दिवस था, इसे अफ्रीका शरणार्थी दिवस के नाम से मनाया जाता था और कई सारे देश इसे 20 जून को मनाते थे। इसकी 50वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में इसे 2001 में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और अगर हम बात करें इसके इस वर्ष की थीम की, यानी कि 2026 की जो थीम है, अनटिल एवरीवन इज सेफ, इसका मतलब है कि जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता, हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए।
0: हर दिन यह जो दिन है वो याद दिलाता है कि हर इंसान को सुरक्षित जीवन, सम्मान और अवसर पाने का अधिकार है। हमें शरणार्थियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनके पुनर्वास और शिक्षा जैसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जाति

0: और लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर और अमित। आज हम बता दें हमारी खास खबरें क्या कुछ है। खास सबसे पहले बता दें कि आज बिजली बंद कहां कहां पर है। न्यू कॉलोनी, वर्मा कॉलोनी, सी ब्लॉक, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, बी ब्लॉक, कृष्णा कॉलोनी, विजय सिंह, पथिक नगर, सेक्टर 9, लोहार कॉलोनी, सबीना मुख्य मार्ग, संभवनाथ कॉम्प्लेक्स, कृष्ण विला, बसंत वाटिका, शिव सोसाइटी, सबीना मठ मार्ग रोड, सूर्या एस्टेट, सबीना खेड़ा, ए बी सी डी ई एच ब्लॉक, सेक्टर 14, गोपाल मार्बल, ऋषभ नगर, गांधी नगर, एमपी कॉलोनी, खेड़ा सर्कल, श्रीनाथ कॉलोनी, रंगीला हनुमान मंदिर के पास, हवा मगरी, नटराज स्कूल के पास। इन क्षेत्रों में आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के क्षेत्र भी बता देते हैं। एफ ब्लॉक, भारत तिरपाल पुलिस थाना, जज कॉलोनी, जनजाति ऑफिस, एसबीआई बैंक, होटल कंफर्ट इन, वर्धमान नगर, ठोकर चौराहा, ठोकर रेलवे स्टेशन, ग्लास फैक्ट्री, शिव चौक, बसंत विहार और प्रीतम पहलवान की गली, इन क्षेत्रों में 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
1: बिल्कुल विद्या, और इसी के साथ में जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट है उसका कल पेपर हो रहा है, ये रीशेड्यूल किया गया है और इस पेपर को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक का टाइम इसमें दिया गया है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो गाइडलाइन है उसमें 1:30 बजे ही दरवाजे बंद होंगे, यानी कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे

0: पहले, तो कई बार हम देखते हैं कि 1 या 2 मिनट से जो बच्चे लेट हो जाते हैं उनके पास थोड़ा सा मौका
1: समय और
0: रहेगा।
1: मिल जाएगा जी।
0: और सबसे खास बात यह है कि इस समय में भी अगर वो लेट होते हैं तो फिर तो विद्यार्थियों की गलती है अगर इसका वो ध्यान नहीं रखें तो। और साथ ही जो वहाँ पर कुछ पारंपरिक चिन्ह पहने हुए लोग आ रहे हैं, जैसे हाथ में कलावा है, लच्छा है, या जनेऊ धारण किया है, या ऐसी जो भी चीज़ें हैं, या बुरखा है, तो इन सभी लोगों को अपनी जांच के लिए 11 बजे अपने निर्धारित जो परीक्षा सेंटर है वहां पहुंचना होगा ताकि समय से उनकी जांच अच्छे तरीके से की जा सके।
1: और वो समय से अपनी परीक्षा दे सके।
0: बिल्कुल
1: और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीबीए पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए हैं। प्रवेश परीक्षा अब 22 जून को होगी। परीक्षा केंद्र, समय और गाइडलाइंस जानकारी एडमिट कार्ड पर भी उपलब्ध है।
0: बिल्कुल। और एक और खबर है वो ये है कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में सीटें खाली है, मावली में जो स्थित है जवाहर नवोदय विद्यालय वहाँ पर, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स अपने लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए 23 जून अंतिम तिथि है। और वो विद्यार्थी जो 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और जिनकी जन्म तिथि 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच आती है वो अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं।
1: और अमित खेल जगत की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं महिला T20 विश्व कप में ग्रुप 2 के मुकाबले की, जो न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीम के बीच साउथहम्पटन में खेला गया। न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड को 4 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। टीम की ओर से इजी शार्प ने 36 रन और ब्रुक हॉलिडे ने 34 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली।
0: और आयरलैंड की ओर से आर्ला प्रेडरगास्ट और कारा मरे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए। 141 रन का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम ने शुरुआती जो उनकी बल्लेबाजी थी वो संभली हुई रही, और कप्तान गेबी लुइस और आर्ला ने टीम को जीत की ओर बढ़ाए रखा। 59 रनों की साझेदारी, माफ़ कीजिएगा, 59 रन बनाए हैं प्रेडागास्टर ने, और लुइस ने 58 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड ने अपनी गेंदबाजी से वापसी करी और 20 ओवर में 136 रन पर ही आयरलैंड को रोक दिया, और इस तरीके से न्यूजीलैंड ने 4 रन से ये मुकाबला जीत लिया और अपनी पहली जीत दर्ज करी। और इसकी बेस्ट खिलाड़ी की अगर हम बात करें जो स्टार रही हैं इस मैच की, वो हैं सूजी बैट्स। अनुभवी ऑलराउंडर बैट्स ने दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
1: और बात करें अब फीफा वर्ल्ड कप अपडेट्स की, तो आज विश्व कप में ग्रुप A, B, ग्रुप D और ग्रुप C के कई अहम मुकाबले खेले गए जिन्होंने टूर्नामेंट की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप B के मुकाबले की, जहां स्विट्जरलैंड का सामना बोस्निया और हर्जेगोविना से हुआ। मैच की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन दूसरे हाफ में स्विस टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए मुकाबले पर पूरी पकड़ बना ली। स्विट्जरलैंड ने यह मैच 4-1 से अपने नाम किया। इस जीत के हीरो रहे मिडफील्डर जोहान मजाम्बी, जिन्होंने 2 शानदार गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित की। इस जीत से स्विट्जरलैंड की नॉकआउट में जगह की उम्मीदें और मजबूत हो गई।
0: बिल्कुल विद्या। और ग्रुप B के ही एक दूसरे मुकाबले में जहां कनाडा और कतर आमने सामने थे, कनाडा ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाए रखा और कतर को कोई मौका नहीं दिया। तेज पासिंग और बेहतरीन फिनिशिंग के दम पर कनाडा ने 6-0 की एक तरफा जीत दर्ज करी। इस मैच में कनाडा के स्टार खिलाड़ी इस्माइल कोने रहे, जिन्होंने मिडफील्ड से पूरे खेल को नियंत्रित किया और टीम को बड़ी जीत दिलाई।

0: और रुक करते हैं ग्रुप ए के मुकाबले की ओर, जहां मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने कड़ा संघर्ष किया। दूसरे हाफ में अनुभवी मिडफील्डर लुइस रोमो ने निर्णायक गोल दागकर मेक्सिको को जीत दिलाई। वहीं इस मुकाबले में सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी रहे और उनकी बदौलत मेक्सिको नॉकआउट दौर के एक और करीब पहुंच गया।
1: ग्रुप डी में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ, जिसमें अमेरिकी टीम ने शुरुआत में तेजी और अनुशासन के साथ खेल दिखाया और अमेरिका ने यह मुकाबला 2-0 से जीत लिया। स्टार खिलाड़ी कप्तान क्रिश्चियन पुलिसिक रहे और युवा खिलाड़ी जो कि रिकार्डो पेपी हैं, उन्होंने अपने आक्रमण में

0: बहुत अच्छा योगदान दिया।
1: और चलते हैं ग्रुप सी के मुकाबले की ओर, जहां स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। यह मैच काफी संघर्षपूर्ण रहा और अंत में मोरक्को ने एकमात्र गोल के दम पर 1-0 से जीत हासिल की। इस मुकाबले के स्टार खिलाड़ी रहे मोरक्को के कप्तान अशरफ हकीमी, जिन्होंने डिफेंस और अटैक दोनों में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को महत्वपूर्ण 3 अंक दिलाए।
0: बिल्कुल, और ग्रुप सी का आखिरी मैच जो अभी आज सवेरे ही खेला गया है, और इस मैच में 5 बार विश्व चैंपियन ब्राज़ील का सामना हुआ हेती से। ब्राज़ील ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी रहे विनीसियस जूनियर, जिन्होंने अपनी रफ्तार ड्रिपलिंग से लगातार हेती को परेशान किया और 3-0 से ये मुकाबला अपने नाम किया।

0: सत्य
1: मेवाड़
0: जी
1: मेवाड़ केवल वीरता और शौर्य की भूमि ही नहीं बल्कि लोक संस्कृति लोक गीतों और लोक कथाओं का भी एक अनमोल खजाना है। और यहाँ का लोक साहित्य सदियों से लोगों की भावनाओं जीवन शैली परंपरा और इतिहास को संजोए हुए है। और आज फोक एंड रूट्स में हम बात करेंगे लोक साहित्य में मेवाड़ की समृद्ध परंपरा। मेवाड़ के लोकगीतों में प्रेम विरह भक्ति प्रकृति और वीरता के रंग देखने को मिलते हैं। विवाह त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। गवरी पणिहारी गीत और विभिन्न लोक नृत्यों से जुड़े गीत मेवाड़ की सांस्कृतिक पहचान है।
0: बिल्कुल, और अगर लोक साहित्य के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं तो लोक साहित्य वो साहित्य होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसका रिटर्न आलेख मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हमारी संस्कृति में इतना घुल मिल गया है, इतने अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट हो रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि दादी नानी और उनकी दादी नानियों से ये प्रथा चली आ रही है, जो लोकगीत चले आ रहे हैं या कहानियाँ चली आ रही है, और इन कहानियों पर हमारे लोक कलाकार बेहतरीन प्रस्तुतियाँ देते हैं। जैसे आपने गवरी का जिक्र किया, ऐसा ही एक खेल है अमर सिंह का खेल, जो हमारे मेवाड़ के महाराणा रहे हैं उनकी जीवनी के ऊपर अमर सिंह का खेला करके एक मेवाड़ी लैंग्वेज में खेला जाता है। इसकी अगर आप स्क्रिप्ट ढूंढने जाएंगे तो शायद ना मिले, लेकिन गांव देहात में ये कहानियां प्रचलित हैं और लोक साहित्य में इसको प्रेजेंट किया जाता है।
1: बिल्कुल अमित, मेवाड़ की बोली बानी में रचे बसे दोहे कहावतें और लोकगीत समाज की बुद्धिमता और जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। यही कारण है कि लोक साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। मेवाड़ की कहावतें स्थानीय जीवन अनुभवों और लोक बुद्धि का परिचय देती है। यहाँ के लोक साहित्य में विभिन्न लोक देवताओं और लोक देवियों का उल्लेख भी मिलता है। इनसे संबंधित अनेक गीत कथाएं और जन लोक साहित्य में देखने को मिलते हैं।
0: और अगर हम प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं की बात करें तो कवि कलोल द्वारा ढोला मारू के दोहे, मुहणोत नेणसी द्वारा नेणसीरी ख्यात, मारवाड़ रा परगनारी विगत, सूर्यमल मिश्रण उन्होंने वंश भास्कर और वीर सरताई जैसी किताबें लिखी हैं, कन्हैयालाल सेठिया, पीथल पाथल और धरती धोरारी जो गीत हम सुनते हैं वो उनका लिखा हुआ है, और विजयदान देथा वाता फुलवारी री, इसे 14 खंड में एक लोक साहित्य और लोक कथाओं की किताबें अवेलेबल है। चंदरवर दाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और शिवदास गार्डन इन्होंने अचलदास खींचीरी वचनिका नाम से लोक साहित्य की किताबें लिखी है।
1: बिल्कुल अमित, हमारे मेवाड़ का लोक साहित्य परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ का लोक साहित्य जनजीवन संस्कृति रीति रिवाज भक्ति प्रेम का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। हमारे समाज के इतिहास संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण साधन है हमारे मेवाड़ का लोक साहित्य।

और अभी जो मैच चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप में वो है तुर्की और पराग्वे के बीच में, और अभी जो हमारे पास अपडेट है 23 मिनट के मैच के साथ में एक गोल दाग दिया है टीम पराग्वे ने। तो ये अपडेट है अभी फीफा की, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। तो लोक साहित्य

यह है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से, बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ी

0: गाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजी दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान ना रहे हैं
2: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को ये दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंट डाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से सेना, पुलिस और विभिन्न

0: स्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप एंजॉय कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीत ट्रेंड की जो इन दिनों युवाओं से लेके हर उम्र के लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। जी हाँ, एंटरटेनमेंट लाउंज में हम जिक्र करेंगे पुराने गीतों के साथ रिमिक्स का ट्रेंड। भारतीय संगीत की दुनिया में पुराने गीतों का अपना एक अलग ही जादू है, चाहे वो 60, 70 या 90 के दशक के गीत हो, उनकी धुनें, उनके बोल आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन बदलते समय में इन्हीं गीतों को नए अंदाज में पेश करने का चलन बड़ा है, जिन्हें हम रिमिक्स कहते हैं। रिमिक्स गानों में पुराने गीतों की मधुरता को बरकरार रखते हुए आधुनिक बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और न्यू साउंड इफेक्ट्स जोड़े जाते हैं।
1: और विद्या, अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है, जो कि तकरीबन 40-50 साल या 35 साल के लोग हैं जिन्होंने पहले गाने सुने हैं, उनको फिर से सिनेमाघर तक खींचने का या उनको नई पिक्चरें दिखाने का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका है।
0: मतलब पुराने गीतों और नए संगीत का एक संगम सा बन गया है।
1: बिल्कुल, और एक तरह से जो नॉस्टेल्जिया वर्ड है उसका बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उन गानों से कनेक्टेड हैं। गानों की अगर मैं बात करूं तो जैसे टिप टिप बरसा पानी हो गया, तम्मा तम्मा हो गया, आंख मारे, दिलबर, साकी साकी, ये गाने हमें नई फिल्मों में भी सुनाई देते हैं। और कई विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने संगीत की गरिमा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक नया तरीका है पुराने गानों से नई जनरेशन को जोड़ने का।
0: बिल्कुल,
1: तो दोनों ही बात अपनी जगह पे सही है।
0: बस ये है कि आज जो हम देखते हैं कि जो गाना है वो खराब ना हो, उसका जो म्यूजिक है वो सुनने लायक हो, बस।
1: हाँ,
0: हम
1: ये जो बेहद जरूरी बात है।
0: बिल्कुल, और आज लगभग हर एक बड़ी फिल्म, संगीत या एल्बम में एक या अधिक रिमिक्स सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, और यह पुरानी विरासत और आधुनिक संगीत को जोड़कर बनाया हुआ एक नया तरीका जो आजकल खूब चलन में है। रिमिक्स के माध्यम से पुराने गीतों को सुनने का मौका लोगों को मिल रहा है और लोगों को अपने बीते समय की यादें ताज़ा हो जाती है। पुराने गीतों को नए रूप में प्रस्तुत करना, जिससे रिमिक्स गीतों की लोकप्रियता को बढ़ावा मिला है, यह ट्रेंड हमें बताता है कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता।
1: बिल्कुल विद्या, और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, पुराने गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए कई सारी फिल्में हैं उनके नाम गीतों के टाइटल पर रखे जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उन गीतों तक हम पहुंचे। जैसे दे दे प्यार दे, जो अभी एक मूवी आई थी, वो किसी एक गीत के ऊपर है, तो इस तरीके से भी अब इन गीतों को फिर से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास चल रहे हैं।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: तो लिसनर्स, आपने एंजॉय करा हमारा रिमिक्स का ट्रेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। मानसून उम्मीदों का मौसम है जो सूखी धरती में नई जिंदगी का संचार करता है। अवेयरनेस में आज हम जानकारी देंगे महत्वपूर्ण विषय अलनीनो का प्रभाव और मौसम। सबसे पहले जानें आखिर अलनीनो क्या है, बताएं अमित
1: जी।
0: अलनीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म हो जाने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है और यह घटना दुनिया भर के मौसम, वर्षा और तापमान को प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल, और अगर अलनीनो की हम बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से हर 6 से 7 साल में होती है, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलने चलते या उसके बढ़ने के कारण ये तीसरे ही साल अलनीनो फिर से आ रहा है। और अगर अलनीनो की बात करें तो इसकी वजह से जो बादल हिमालय की तरफ जाते हैं वो हिमालय की तरफ ना जाकर अफ्रीका की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाते हैं। इसके दो बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। पहला, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता है क्योंकि बारिश नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा प्रभाव यह है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ के आसार बनाते हैं, तो इससे जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, साथ में फसलों को नुकसान होता है। और क्योंकि हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है और बहुत सारी जो व्यापार हैं वो भी खेती के आसपास ही रहते हैं, तो उन सभी पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है।
0: और बिल्कुल, मानसून केवल बारिश का नाम ही नहीं बल्कि भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन की धुरी है। अलनीनो जैसी मौसमी घटनाएं हमें समझाती है कि प्रकृति के छोटे से बदलाव का प्रभाव कितनी दूर तक पड़ सकता है। इसलिए अलनीनो की निगरानी और समय पर तैयारी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल, और इससे अगर थोड़ा सा हम बचाव चाहते हैं या थोड़ा हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो एक जो वर्षा जल का संचय एक ऑप्शन है कि जितना भी पानी अगर हमारे पास आ रहा है वो वेस्ट ना जाए, मतलब नालियों और नदियों के थ्रू कहीं और ना पहुंच जाए, तो उसकी कोशिश करें कि हम अपने वर्षा जल को अपने ही भूमि संग्रहण में इकट्ठा कर पाएँ, तो इसके लिए हम कुछ कोशिश करते रहें। साथ ही अगर खेतों में है तो वहाँ पर छोटे छोटे हम पिट बनाएँ, आजकल इसके लिए सरकार की भी कुछ योजनाएँ हैं, अगर आप नेट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उस तरीके से आप अपने खेती के लिए भी पानी बचाने की कारगर उपाय करने चाहिए हम लोगों को।
0: जल संरक्षण का जो उपाय है वो अपना कर भी हम इससे बच सकते हैं।
1: जी,
0: और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि योजनाएं बनाएं, ये भी एक माध्यम है।
1: बिल्कुल सही बात है।

0: और अमित, इस गीत के साथ ही हमारे नमस्कार उदयपुर से इजाजत लेने का वक्त हो गया है, तो आज के इस प्रोग्राम से लेते हैं इजाजत। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: अमित,
0: तो दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 9:30 हुए हैं।

0: ये गज़ल थी जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुने सुगम संगीत में अगली गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में।
1: अहमद फराज की एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है। ये गज़ल आपको ज़रा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

ये गजल थी लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली गजल सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

600 यानी 1125 किलो हर्ट्स पर सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुने शीर्षक गीत जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आंखें शीर्षक पर कुछ चुनिंदा गीत। पहला गीत हमने आपके लिए लिया है फिल्म चिराग से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
11: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: शीर्षक गीत, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुने अगला गीत महल फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गीत था फिल्म घर से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। शीर्षक गीत ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम धनवान।

0: ये गीत था माय नेम इज़ खान फिल्म से, आवाज़ें शफकत अमानत अली खान और साथियों की।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदय।

शीर्षक गीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आंखें शीर्षक पर कुछ चुनिंदा नगमे। अगला गीत गुलाम फिल्म से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

0: दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया राग ललित, और आज के शास्त्रीय संगीत में बस इतना ही।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
2: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
11: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। समय मिला लें, 11:30 हो चुके हैं। दोस्तों, आइए अब आपकी नजर करते हैं चंद बेहतरीन गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। पहली गजल हम आपकी नजर कर रहे हैं पंकज उदास की आवाज में।

दोस्तों, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। तो कार्यक्रम में अगली गजल आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर पंकज उदास की आवाज़।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अब बारी है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर,
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
1: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
11: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
14: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में। और आइए, बाप की नजर कर रहे हैं मेहदी हसन साहब की आवाज में ये गजल।

दिन के ठीक 12:01 हो चुके हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। फिल्मी गीतों के इस सफर का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में सागर फिल्म के इस गीत के साथ।

दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सफ़र में आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में कस्मे वादे फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अब बारी है एक छोटे से ही कमर्शियल ब्रेक की।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। इस सफर में आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं गुलामी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़।

दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सफ़र में आइए। अब आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जिसमें मिली जुली आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथ में पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। जी हाँ, फिल्म का नाम है ज़माने को दिखाना है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

दोस्तों, फिल्मी गीतों के सफर के इस सेगमेंट का आखिरी नगमा हम आपको सुनवाने वाले हैं। आशा भोसले की आवाज और साथ में साथियों का स्वर भी आपको सुनाई देगा और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम।

0: दोस्तों, फिल्मी गीतों के सफर का ये सेगमेंट बस यहीं तक। अगला सेगमेंट होगा दिन में 1:45 पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपथ से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
2: हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक

0: बसें स्वीकृत की गई है जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है जो स्कूल में ला करके 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य BLO के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
2: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोस्तों, दिन का 1:05 हो चुके हैं। हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सहलियारी बाड़ी।

0: राम राम सरजू बैसा, राम राम।
1: राम राम पूजा बैसा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी हुणवा वाली आपणी हंगली बेना ने आपणो राम राम सा। देखो बैसा, कार्यक्रम में आया हाँ तो सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम रे पीटार रे मैंने अलग अलग जानकारी लेन राजस्थानी लोकगीत और देखो संदेश लेन हाजिर हुआ हाँ। और आपणी भी हंगली बेना देखो काम वाम निपटीन रेडियो सेट रेडे बड़े आएगी है। लता बैसान, चंदा बैसान, रतन बैसान और वे वाट नाल रही है कि देखो सा कार्यक्रम रे मैंने कई के जानकारी लाया हो तो सब पहली देखो आपा हर आपा महिला सशक्तिकरण री बात करा आपणी बेना रे बारा में जानकारी करावा सब पहली तो बैसा कई जानकारी लाया हो।
1: देखो सा जटे आप जानकारी री बात करी रहा और महिला रे वास्ते आप सहेलियारी वाली कार्यक्रम मैंने लेने आया हाँ कि तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य रे बारे में। तो देखो सा कि तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरों गहरों जुड़ा तका है। जटे मानसिक

0: सका कि पेंशन है, बिल भुगतान है, या पछी कोई शिकायत पंजीकरण है, या मोबाइल आधारित सरकारी योजना रे बारे में जानना चाहवा, तो कृपा आप मतलब अणी तरीकों सटीक जानकारी रे वास्ते बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी वेवे जणी पे भी जाई सको। और अणी तरीका जो है नी वेवे तो आपने आसपास जो ग्राम सभा वगैरह है, या पचे और आपने अड़े बड़े कोई ई मित्र वालों है, तो वटू आपने जो है और भी आगे आप जानकारी प्राप्त कर सका सा।
1: और अंडे लारे लारे भैसा, देखो राज्य स्तरीय सेवा की बात करा तो राजस्थान रे मैंने राज्य मैंने नागरिक जन सूचना या ई मित्र मोबाइल प्लेटफॉर्म रे जरिए जाति है, मूल निवास है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, शिकायत निवारण जैसा नरेहारी जैसी ऐसी सेवा है जो अपनी बेना जो है राज्य स्तरीय सेवा जो है अणा प्लेटफॉर्म रे माध्यमों प्राप्त कर सके है सा। तो या तो जानकारी भी भैसा मोबाइल आधारित सरकारी सेवा बारे में। और अबे को तो बढ़िया सो राजस्थानी गीत और हुनामा पिना ने।
0: हाँ सर।

सारे महीने देखो, वे अगर ऐसा उत्पाद है जो हर्बल उत्पाद है, वे वनारा ज्यादा ज्यादा वगेगा। अंडे वास्ते वनाने सबू पहला कई करनो है कि सबू पहला उत्पाद रो चयन करनो है। देखो सबू पहला उत्पाद रो चयन कर रहे हाँ, तो यो चयन जो है त्वचा और बालारे वास्ते अगर करा, तो अंडे वास्ते त्वचा और बालारे देखभाल रे वास्ते हर्बल शैम्पू वे गया, ये वणे सके, फेस वॉश वणे सके, तेल वणे सके, क्रीम वणे सके, ये सब आपने देखो त्वचा और बालारे वास्ते बहुत ही बढ़िया वेगा सा। और आपका आपा चावा तो स्क्रब भी वणे सका हाँ सा। और स्वास्थ्य पोषण वास्ते अगर आपा देखा।

0: करणजी भी आपा जटे बात करा कि देखो ये सब चीज़ा वणावर वास्ते अणी जरूरत पड़े है, पर देखो स्वयं रो प्लांट जो है वो भी आपा लगाई सका। अणी रे महीने मिक्सर पैकिंग करवारो काम, मशीनरी और क्वालिटी और रेटिंग ये लेबरी आवश्यकता अणा महीने पड़े, तो अणी रे महीने के ये आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण री जरूरत पड़े। तो यो है हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादन ने बाजार में वेचवारे वास्ते प्रमुख दस्तावेज री आवश्यकता भी करे है। और आयुष मंत्रालय रो जो लाइसेंस है वो हर्बल दवा रे वास्ते अनिवार्य रूप है। जणी रे महीने जीएसटी पंजीकरण करनो जरूरी है व्यवस्था शुरू करवा रे वास्ते। दूसरो ट्रेडमार्क री बात आवे तो आपणे ब्रांड नाम ने सुरक्षित राखवा रे वास्ते।
1: हाँ सा, और देखो ट्रेडमार्क रे वास्ते अपनों कोई भी अगर आपा उत्पाद बनाई रहा हर्बल उत्पाद, तो वनडो कोई भी ब्रांड नेम अगर आपा सुरक्षित रखा तो वनडो ट्रेडमार्क करवानो बहुत ही जरूरी वे वैसा। और अपनी बिना ने बतावा कि अगर हर्बल उत्पाद अगर कर रही है या कहीं भी उद्योग लगाई रही है तो मने उद्योग रो रजिस्ट्रेशन करवानो बहुत ही जरूरी है। सरकारी योजना रो लाभ लेवा रे वास्ते अगर अपनों उद्यम रो अगर रजिस्ट्रेशन करावांगा तो अपने पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और देखो अगर आप हर्बल उत्पाद निर्माण कर रहे हैं सरजू बैसा, तो अंडे महीने सामग्री और पैकेजिंग रो भी अगर अपन ध्यान रखांगा तो अपन जो उत्पाद है वो बढ़िया रहेगा सा। जड़ी बूटिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करवारे वास्ते, कोई भी चीज बनाई रहा वंडे प्रमाणित करवारे वास्ते, निर्माता और आपूर्ति करवारे लिस्ट रे देखवारे वास्ते तो बहुत बढ़िया रहेगा। और देखो सा वंडे माते अगर आप हाउ तरीका री पैकेजिंग वेगा और हाउ तरीका री लेबलिंग वेगा तो अपन उत्पाद जो है वो आपड़ती वकेगा। और देखो सा उत्पाद आपड़ती वकेगा तो अपनी जो बेना है वे हर्बल उत्पाद जो निर्माण कर रही है वना में बहुत ज्यादा मुनाफो वेगा सा।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है अपनी बहना ने आपा कराई। और देखो सा कि कार्यक्रम महीने आपा आवा तो देखो कार्यक्रम री गुणवत्ता ने बढ़ावो देवारे वास्ते, तो देखो आपना जो जत्री भी बहना है वे देखे कि कार्यक्रम रे वच्चे वच्चे माने राजस्थानी गीत हुणवान में मिले तो और अणी कार्यक्रम में चार चांद लाग जासा। तो आप केवो तो ले चाला अपनी बहना ने गीत गुंजन री दुनिया में और हुणावा एक राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: तो सरजू ऐसा कतरो बढ़िया गीत उड़ायो बेना ने, और अपने कार्यक्रम ने महीने नवी योजना रे बारे में जानकारी करावा अपनी बेना ने। तो आज अपनी बेना ने जानकारी करावांगा सुकन्या समृद्धि योजना रे बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटिया रे भविष्य ने सुरक्षित और उज्ज्वल बनावे वास्ते बहुत ही बढ़िया बचत योजना है। और अंडे महीने अगर आप बात करा तो वर्तमान महीने 8.2% वार्षिक दर ब्याज मिल रो है। न्यूनतम जटे आप बात करा तो 250 रुपयों ले अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक प्रतिवर्ष आप देखा तो अंडे महीने आप जमा कर सका हाँ सा। और योजना की जटे बात कर रहे हाँ तो अंडे कई कई विशेषता है अंडे बारे में भी अपनी बेना ने बतावा। पात्रता जो है वह 10 वर्ष कम री जत्री भी अपनी बेटी है बालिका है वनारे माता पिता या पे कानूनी अभिभावक यो खातो आसानी खोल सके है सा।
1: बिल्कुल हाँ जी बात कह रहा हूँ सा। देखो प्रति बालिका केवल एक खातो एक परिवार में अधिकतम 2 कन्यारों आपा खातो खुलवाई सका हाँ। और अणी में जुड़वा बच्चा मामला अगर वे तो 3 बच्चारों प्रावधान है सा। और जटे जमा अवधि री आप बात करा तो देखो सा कि खाता खोलवारी तारीख को केवल 15 वर्ष तक ही पैसा जमा करना वे है। और जटे आप परिपक्वता री बात करा तो खाता खोलवारी तारीख को लगाई ने और 21 साल पूरा वेवा पे या योजना जो है पाकी जावे सा पूजा वैसा
0: हाँ सा। और निकासी री जटे आप बात करा तो अपने बेना ने बतावा कि अंडा निकासी रा कई नियम या योजना रा तो बालिका रे 18 साल री आयु पूरी वेवा पे अपने जो बेना है वे अंडे ने निकासी कर सके या पछे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करवा रे केड़े उच्च शिक्षा रे वास्ते राशि रो अधिकतम 50% तक अंडे महीने निकाल सके है सा। और बाकी 21 साल परिपक्व वेवा पे तो अंडी राशि अपने निकाल सका हाँ सा। कर लाभ री जटे बात करा तो अणी योजना रे महीने निवेश कीधी लगी राशि पे आयकर अधिनियम रे तहत 1.5 लाख रुपया तक रे अंडे महीने छूट मिली सके है। और देखो सा बेना सुकन्या समृद्धि योजना रो अगर लाभ लेनो है तो खातो कटे खुलावे यो भी आप बतावा कि भारत रे महीने कटे भी वाणिज्यिक बैंक रे महीने अपनी बेना खातो खुलवाई सके है या पछे नजदीकी डाकघर रे महीने भी अपनी बेना खातो खुलवाई सके है सा। तो देखो बेना या जो सुकन्या समृद्धि योजना है वह अपनी बेटिया रे वास्ते बचत री घनी बढ़िया योजना है। देखो भणे पढ़े रे वास्ते भी अब कई घड़ी में आपा देखा कि देखो वणा रे व्याम मंडल रे वास्ते भी पैया री जरूरत रे पड़े है। देखो वैसा सरजू वैसा तो वनडे वास्ते या घनी बढ़िया योजना है। देखो आज बचत करांगा तो अपने भविष्य रे महीने पैया काम आएगा सा। तो सुकन्या समृद्धि योजना रे अंडो खातो खुलवाई ना अपनी बेना देखो बालिका रे वास्ते अंडो लाभ पूरो ले सके है सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो सा बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है आपा अपनी बेना ने दीदी सा। और देखो एक बार और ले चला गीत गुंजन दी दुनिया में और हुणा वे एक और राजस्थानी गीत
0: हाँ सा।

0: तो सरजू बैसा, देखो घूमर गालू जी बढ़िया सो गीत हुणायो आपने बेना ने। और देखो सा टेबल टुबरे रे छुट्टियाँ चल रही है, अपने जतरे भी काम काजी बेना है वणारे भी देखो सा बार छुट्टियाँ है। तो अणी छुट्टिया रे महीने आपणी बेना कटे भी घूमवारो मन करे है। तो देखो अबार आपणी बेना ने आपा घर बैठा रेडियो रे माध्यम ऋषिकेश रे महीने घुमावा सा।
1: बिल्कुल सा। और झटे पूजो भैसा बात करी रहा हो ऋषिकेश री, तो कहा ऋषिकेश तो घूम मारी बात तो था बताई दीदी, पर वणी रे महीने यूं है कि देखो आप जावांगा तो आपने नरो हारो सामान लारे ले जानो पड़ेगा, नरो हारे आपने गाड़ी रो साधन करना पड़ेगा और ये चीज़ें भी करनी पड़ेगा। तो देखो ऋषिकेश री बात तो आप पहला बताई दा, पछा आप गाड़ी री बात भी करांगा सा। तो देखो अणी ऋषिकेश जैसी दुनिया ने है कि योग राजधानी भी क्यों जावे। उत्तराखंड रा देहरादून जिला में गंगा नदी रे तट पे स्थित एक प्रमुख आध्यात्मिक साहसिक पर्यटन स्थल है। यो शहर आपणी प्राचीन संस्कृति ध्यान केंद्र ने और भी निखारवर वास्ते देखो राफ्टिंग लगे रख्या है, रोमांचक खेतारे वास्ते दुनिया भर में प्रसिद्ध ऐसा। और घना हारा देखो बटे समतल जमीन है, तो ऐसा खेत भी पड़िया जटे खेल रहा मैदान भी बढ़िया तका है ऐसा। तो अणी तरीकों जो है हर जगह पे हर चीज देखवारो आपने बहुत ही बढ़िया मौको मिले। और कुल मिलन कहवारो मतलब कि जो एक ऋषिकेश है वटे एक प्रमुख आकर्षण रो नज़ारो देखवाने मिले है ऐसा।

0: हाँ सा, और देखो सा, वडेरा जो मुख्य मुख्य आकर्षण रा केंद्र है, अगर अपनी बेना जावे तो वडे त्रिवेणी घाट जो गंगा यमुना और सरस्वती रो जो संगम है, बड़ बहुत ही बढ़िया शाम रो जो वडे भव्य गंगा आरती वेवे वटारो, बहुत ही बढ़िया मुख्य आकर्षण त्रिवेणी घाट रो, अगर अपनी बेना जावे तो अंडो आनंद भी वे आरामू ले सके है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात की रहो सा। देखो परमार्थ निकेतन री जटे आप बात करा तो ये शहर जो है सब बड़ा आश्रम रे महीनों एक है, जटे योग आध्यात्मक और वेदारे वास्ते शिक्षा दी जावे। नीलकंठ महादेव मंदिर आप बात करा तो ऋषिकेश हूँ लगभग 28 किलोमीटर दूर पहाड़िया में स्थित यो प्राचीन मंदिर भगवान शिव रे समर्पित है, और देखो यो समर्पित भी है। और अनी तरीको आपा साहसिक गतिविधियां री भी बात कराओ, लारे लारे देखो अटे राम झूला लाग्या तका है, लक्ष्मण झूला लाग्या है, गंगा नदी पे वण्या तको एक प्रतिबिंब सस्पेंशन ग्रीज शहर री पहचान है। अटे जो यो ब्रिज है यो अने देखा तो एक एकदम आकर्षण जो है आपनो एकदम अलग ही प्रकार रो वे जावे। अटो वापस आसपास रा पहाड़ी और घाटा रा जो शानदार नजारा है वणी देखवारो आनंद तो और अलग ही आई जावे है सा।
0: हाँ जी बात की रहो वैसा। और देखो सा, ऋषिकेश री आप बात कर रहे हैं, हाँ तो अटा बीटल्स आश्रम जो है झंडे की 84 कुटिया भी कहवे है, वो राजा जी नेशनल पार्क रे पास में स्थित है, और यो स्थान जो है वो ध्यान योग और संगीत रे वास्ते वो है बहुत प्रसिद्ध है सा। और साहसिक गतिविधियाँ री जटे बात करा सरजू वैसा, तो रिवर राफ्टिंग री बात करा तो गंगा नदी रे महीने राफ्टिंग रो सब लोकप्रिय एडवेंचर है, और कैपिंग री बात करा तो नदी रे किनारा या पचे वादिया रे वच्चे रात बितावारे वास्ते प्रकृति रे करीब रेवारे वास्ते कैपिंग जो है वो भी अटे बहुत ही बढ़िया विकल्प है सा। और वाटरफॉल्स रे वास्ते वाटरफॉल्स ट्रेक की बात करा तो नीलगढ़ और पटना वाटरफॉल्स जो है खूबसूरत जन्नारे महीने एक है, और अटे आप ट्रेकिंग करांगा तो वंडो तो एक अलग ही मजो है सा।
1: देखो सा जटे मजा री आप बात करी रहे हो तो ऋषिकेश घूमवाऊँ सबू आदर्श समय सितंबर हूँ नवंबर रे महीने, और पचे मार्च हूँ मई रो महीनों, और अबार भी जो है आप जुलाई पहला पहला जाई सक रहा है सा, क्योंकि बटे मौसम भी अबार बढ़िया, देखो थोड़ी गर्मी भी कम पड़ गई है, और अणी तरीकों जो है आप घूमी फरी सक रहे हाँ, अणी समय मौसम सुहावनो रहे, और राफ्टिंग कैफ्टिंग और गतिविधियाँ पूरी तरीकों चालू रहे है। और देखो जटे कितर पहुंचवारी बात करा तो देखो अबे आई है मेन बात तो आपने कि किसर पहुंचा, तो देखो घनी हारी बेना तो हवाई मार्ग पहुंची सकेगा, घनी बेना रेल मार्ग पहुंची सकेगा, नरी हारी बेना सड़क मार्ग को आई जाएगा। और री बात आपानी बेनारीन आपानी तो आपा किसर पहुंचांगा तो वह बात मु आपने बताऊं कि देखो आपा कई करांगा कि आपा ऐसी करा कि एक काला कलर की कोई गाड़ी आवे वही काला कलर की गाड़ी कर ला, और बड़ी गाड़ी में जावान मस्त बढ़िया गीत भजन कीर्तन करता करता आप ऋषिकेश पहुंची जावांगा सा।
0: हाँ सा, तो चाला काली थारे माध्यम।
1: हाँ सा।

0: तो पूजा भैसा
1: हाँ
0: अरे असी कसी गाड़ी लाया यार, गाड़ी में बैठा बैठा तो ऐसा मस्त गीत हुणता हुणता देखो ठेठ ऋषिकेश पहुंची गया ना, टेम रो ध्यान नहीं रियो सा।
1: हाँ सा टाइम ही वे गयो आपने तो कार्यक्रम रो, और अबे को तो अबे आपने घरे चला सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो कि अबे कार्यक्रम चाल वारो टेम वे गयो सा, तो चला सा
1: राम राम सा।

हमारी बहनों ने अभी सुना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन का 1:45 हो चुके हैं दोस्तों, और आइए अब एक बार फिर आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफ़र में। इस बार सफ़र का आगाज़ हम कर रहे हैं खुद्दार फिल्म के गीत के साथ। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ है।

0: दोस्तों, फिल्मी गीतों के सफर का अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से संदेश के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आइए अब आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़।

दोस्तों, अब बारी है कार्यक्रम के आखिरी नगमे की, और ये नगमा हमने लिया है कयामत से कयामत फिल्म से, अलका याग्निक, और उनके साथ हैं उदित नारायण।

दोस्तों, आज के फिल्म गीतों के इस सफर को बस यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 2:10 हो चुके हैं दोस्तों। कार्यक्रम विकास चर्चा में आइए, आज आपको जानकारी देते हैं प्रसाद योजना के बारे में।

प्रसाद योजना, जिसका पूरा नाम तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य चिन्हित तीर्थ स्थलों पर सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देना था। प्रसाद योजना के अंतर्गत भद्राचलम मंदिर समूह और तेलंगाना में रामप्पा मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह लेख जो है खासकर आप सबको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपको भी इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों और इसके महत्व को आप लोग जान पाएं। योजना का अवलोकन करें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है और इस योजना का उद्देश्य जो था वो देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास और पुनरुद्धार करना, इन स्थलों पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार करना, ये पहल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक होगी और भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। इतिहास की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-2015 में शुरू की गई प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य भारत भर के तीर्थ स्थलों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। अक्टूबर 2017 में ये योजना राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी कि प्रसाद में परिवर्तित हो गई। इस परिवर्तन ने विरासत विकास को, जो पहले आवास और शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना के तहत प्रबंधित किया जाता था, प्रसाद में एकीकृत कर दिया गया, जिससे तीर्थ यात्रा और विरासत पुनरुद्धार के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जो है वो तैयार हुआ। प्रसाद परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधीन

कार्यरत नामित एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है और ये सहयोगात्मक ढांचा तीर्थ स्थलों में कुशल कार्यान्वयन और सतत विकास को सुनिश्चित करता है। प्रसाद योग्य परियोजना घटक के लिए 100% सार्वजनिक वित्त पोषण मॉडल पर काम करता है। इसके अतिरिक्त ये योजना कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहलों और सामाजिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से स्वैच्छित योगदान को भी शामिल करती है। ये अभियान वित्त पोषण रणनीति न केवल परियोजना की स्थिरता को बढ़ावा देती है बल्कि सामूहिक भागीदारी और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित भी करती है। और योजना के उद्देश्य तो हम आपको बता ही चुके हैं, इसके मुख्य घटक भी इसके अंदर क्या होगा कि अवसंरचना का विकास भी होगा, सड़कों का उन्नयन भी होगा, विश्वसनीय जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं को भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रभावी प्रणालियों को भी लागू किया जाएगा, कनेक्टिविटी सही की जाएगी चाहे रेल और हवाई संपर्क हो, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। प्रसाद योजना का मूल उद्देश्य जो है वो है पर्यटन अनुकूल आवास, स्वच्छ और स्वस्थ कर भोजन जो है वो आपको मिल पाए, बेहतर साइनेज और वेफाइंडिंग सिस्टम जो है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो पाए, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तो होगा ही, साथ में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, स्थानीय समुदायों में सशक्तिकरण की जो भावना है वो भी प्रगाढ़ होगी और सतत विकास जो है इसके अंतर्गत भारत सरकार का होगा। तो विकास चर्चा में आज हमने आपको जानकारी दी प्रसाद स्कीम के बारे में। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम, दिन के 2:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

0: उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा।

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी

और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी

0: रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गायस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता

0: बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। समय आपको बता दें 2:30 हो चुके हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम पूजा भैसा, राम राम।
1: राम राम सरजू भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होना वाला हगले किसान भाई बहना ने आपानो राम राम सा। देखो सा कार्यक्रम रो टेम भियो और आपा जो है कार्यक्रम री जानकारी लेने आई गया हाँ सा अठी नहीं। देखो मेगाबा खेमाबा रत्नाबा हंगले ये किसान भाई लोग है ये भी देखो रेडियो सेट पे बैठ गया है और अपनी जानकारी होनवारे वास्ते। और अठी ने खमाणी बुआ और लाडली बुआ ये भी देखो ये भी अनार काम धाम छोड़ी रोटियां भी खाई पीन निपटी निपटाई ने देखो बात तो होनवार वास्ते आई गया है सा। तो पूजा भैसा आज आप कृषि जगत कार्यक्रम में किसान री बात रे महीने लाया हाँ मानसून पूर्व पशुरो जो टीकाकरण है वणी रे बारे में जानकारी तो बतावा सा।
1: घनी बढ़िया जानकारी लाया हो भैसा। देखो अबार मानसून आवा वालो है और अंडे पहली जो है अपने ढंडा चौपारो टीकाकरण करवाणो है यो बहुत ही अपने किसान भाई बहना ने ध्यान रखवारी बात है। तो अपने देखो ढंडा चौपा ने वर्कर टेम जो है नमी कीचड़ और नवी घास रे फैलावा वाला जितना भी जानलेवा रोग है जिस तरह की गलघोंटू वे गयो लंगड़ो बुखार है खुरपका मूरपका है अणु बचावे वास्ते यह बहुत ही बढ़िया आवश्यक प्रक्रिया है कि मानसून पहली टीकाकरण कराड़ो है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। यो टीकाकरण बीमारी री शुरुआत पहला कम कम 15 दिन पहला करियो जानो चावे ताकि बनारे शरीर में पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित वे जावे और पशु जो है बीमारियों वंची सके सा।
1: जटे टीका री बात करें हाँ वैसा तो आवश्यक टीका है मानसून रे बचाव वास्ते वणा ने पशुपालक री या पशु चिकित्सक री देख रेख रे महीने लगवाना चावे है। देखो गलघोंटू री बात करा तो यह बीमारी मानसून रे महीने बहुत तेजियों फैले अंडे बचाव रे वास्ते टीका जो है बारिश में शुरू पेवारे पहला आपने ढांडा चौपाड़े लगाई देनो चावे जणू जो है गलघोंटू बीमारी नी वेवे है सर।
0: बिल्कुल सा। और अभी देखो बात करा लंगड़ा बुखार री अक्सर आपा देखा कि नमी आओ नमी वाला जितना भी मौसम है वे घना हारा दूषित वे वे क्योंकि मिट्टी और चारा रे महीने अन्नो संक्रमण जो है बहुत तेजू फैलवा लाग जा और अणी तरीकों जो संक्रमण फैले तो वन्ने वंचावरे वास्ते ही यो मानसून पूर्ण टीकाकरण कराणो जरूरी है क्योंकि कतरी बार कही वे कि किसान भाई लोग देखे कि चलो मवेशी है जो कई खबर नहीं खाता वेगा नहीं पीता वेगा अणी बात वे ध्यान नहीं देवे तो वो पतो भी नहीं चाले और महीने

0: महीने संक्रमण फैल तो जावे। और खास करना यो लंगड़ा बुखार जो है यो कि अगर मौसम में नमी वेगा तो नमी री वजह मिट्टी भी दूषित वे जावे, तो वणियों चारों है वणारे सब महीने है जो संक्रमण लागवारी या रेवे कि नीचों जड़ाई ज वणारी खराब वे जावे। तो अणी हिसाबों आपने मानसूनों पहला टीकाकरण कराना जरूरी है। तो अबार रो यो समय जरूरी सही है, तो अणी समय में आपा पशुओं रो टीकाकरण कराई सका, ताकि जो है 5-10 दना रे महीने वरका आएगा तो वनर वरका रे महीने वनर वे पशु जो है वे वनर अणी लंगड़ा बुखारू वंची सकेगा सा।
1: हाँ सर, और वैसा देखो खुरपका मुँहपका की बात करा तो बारिश रे टेम या बीमारी महावारी रो रूप ले लेवे है। और अंडो टीका हर 6 महीना रे महीने लागे है सा। तो अपने देखो हाउ चेत रहनो है अपने पशुपालक ने, और जो खुरपका मुँहपका रोग है अंडो भी टेम पे टीको लगवाणो है सा। और भेड़ बकरिया रे वास्ते बकरिया रे महीने PPRET और टिटनेस रो टीको जो है वो बर्स वर्करे मौसम रे पहला लगाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखो सा भेड़ बकरिया जो है अड़ा ने देखो ये जो घास है वगैरह है, तो अंडे महीने देखो नरे हरा सा जो जानवर है वणु अड़ा ने देखो संक्रमण में वारो खतरो रेवे। तो अगर वे वर्करे पहला ये टीका लगे लेगा तो वणा ने वो संक्रमण नी वेगा सा।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहे हो सा। देखो टीकाकरण पहला ध्यान रखवा वाली जो वाता है वे वाता भी आपा किसान भाई लोगों ने और बहना ने बताई दा कि देखो जंतनाशक टीको लगवाओ कम कम 1 सप्ताह पहला। आपना जतरा भी पशु है वणारे पेट रा जो कीड़ा है वणारे मारवारी दवा जरूर देनी है। तो वणियों कई वेगा कि पशु जो है वे धीरे धीरे वणारे महीने पटाटा जतरा भी वेगा तो वे खत्म वे जाएगा। और वणियों कई वेगा कि पशु जो है पूर्ण रूप स्वस्थ रहेगा। और जटे स्वस्थ पशु री बात करी रहा तो आपने पूरी तरीकों स्वस्थ और तनाव मुक्त पशु रो टीकाकरण जरूर करवानो है सा।
1: हाँ भाई सा, तो देखो सा कार्यक्रम में आया हाँ किसान भाई बहना ने और जानकारी कराऊंगा। देखो पशु चिकित्सक री सलाह भी बतावा कि टीकाकरण हमेशा प्रमाणित डॉक्टर या पचे पशु चिकित्सालय रे माध्यम इस करावे। जणू कहिए कि सही जो वे जतरी भी डोज देगा वे सुनिश्चित तरीकों देगा। गौशाला रो प्रबंधन भी करनो है। अंडे अलावा देखो गौशाला बाड़ा रो जल भराव अपने वर्का में नहीं वेवा देनो है। कीड़ा मारवारे वास्ते देखो साफ सफाई करता रहना चाहिए। और जो ठंडा चोपा ने आहार दे रहा वड़ा ने मिनरल मिक्सर करीन पचे अपने आहार देना चाहिए है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कही रहो सा। तो देखो अणी तरीकों जो आपने किसान भाई बहन है वे ध्यान रखेगा तो जईने आपना जो जतरा भी पशु है वणारो टीकाकरण जो है वो भी व्यवस्थित रूप में वे सकेगा। और टीकाकरण अगर आप मानसून पूर्व और व्यवस्थित करवाई दांगा तो अपना पशु जो है वे भी एकदम स्वस्थ रहेगा। और जटे स्वस्थ रहेगा तो देखो पशु भी खुश रहेगा और आपा भी खुश रहेगा। और जटे खुशी री बात आवे पूजा भैसा, तो देखो एक राजस्थानी गीत होने मणि खुशी ने दुगुणी करदा सा।
1: हाँ सा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो पूजा भाई सा,
6: हाँ सा,
5: देखो सा, बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है आपा किसान भाई बहना ने आपा हुनायो सा। और देखो सा कि अबे कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और जानकारी किसान भाई बहना ने आपा करावा कि बरसात पूर्व चारो प्रबंधन कणी तरीको करनो चावे सा।
6: हाँ सा, बरसात रे पहली देखो चारो प्रबंधन रो मुख्य उद्देश्य वेवे की वर्का रे मौसम ने चारा रे महीने सड़वों वचाणो है दुधारी।

0: जतरा भी पशु है वणा ने लगातार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराणो है सा। अंडे महीने आपने चारा ने रो सूखो भंडारण कर सका या हरा चारा रो संरक्षण भी आपा कर सका और पशु आहार ने सुरक्षित वाड़ा रो आपने तैयार करनो भी अंडे महीने शामिल है सा।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो जो बरसात तो पहला चारो और पशुओं रे प्रबंधन रे वास्ते अपनावा जावा वाला जो प्रमुख उपाय है वे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो कि वर्का रो टाइम है और वर्का तो देखो आवनी आवनी है और अस्सी अणी वर्का रा टेम महीने अगर आपा चारा रो प्रबंधन नहीं करांगा तो पछे आपना मवेशी है वणा ने आपा कई डालांगा। तो अणी वास्ते सब बढ़िया बात या कि चारा रो सुरक्षित भंडारण करनो है। यो सुरक्षित भंडारण किस तरह आपा कर सका तो वो आपने किसान भाई बहना ने बतावा कि सूखो चारा री व्यवस्था जो है कि आपा सब पहला तो सूखा चारा री व्यवस्था करनी है। बड़ी सूखा चारा री व्यवस्था में वेगियो जिस तरह भूसो वेगियो कड़बी वेगी सूखी घास वेगी अणा सबने ही आपने जो कूंदवान लगाई राख्या वणा ने सब टू वाड़ा महीनू हटाई ने आपने घर रे महीने एक सुरक्षित जो भंडारण वणाए तो कोवे पोल है या पचे आपने किसान भाई बहना ने बतावा कि सूखो चारा री व्यवस्था जो है कि आपा सब पहला तो सूखा चारा री व्यवस्था करनी है। बड़ी सूखा चारा री व्यवस्था में वेगियो जिस तरह भूसो वेगियो कड़बी वेगी सूखी घास वेगी अणा सबने ही आपने जो कूंदवान लगाई राख्या वणा ने सब टू वाड़ा महीनू हटाई ने आपने घर रे महीने एक सुरक्षित जो भंडारण वणाए तो कोवे पोल है या पचे आपने कटे ऐसा कमरा है ओरिया वणाई राखी है वणा रे महीने या पचे कोई पक्का ऊंचा स्थान वणाई राख्या है वणा रे महीने व्यवस्थित है जो आपने ले जाइने वणी महीने भर देनो है और भरिया भरवारे बाद में ध्यान राखणो है कि वणा रे ऊपरे पानी नहीं पड़े। तो अगर पूरो घर व्यवस्थित है तो भी अगर यूं लागे कटी पानी आई सके तो वरकारा पानी ने वंचावा रे वास्ते कड़ी ऊंचा बोरिया रा तापड़ा कर रखी ना आपावणी पे ये प्लास्टिक रखी ना पचे लकड़ा आपावणे व्यवस्थित ढांकी दांगा तो पानी बिल्कुल भी है जो महीने नहीं आएगा। अणी तरीका आपा चारा रो सुरक्षित भंडारण करी सक रिया। हाँ
0: हाची बात कह रहा भाई सर। और अंडे लारे लारे आपने किसान भाई बहना ने ध्यान रखणु है कि नमियों आपने वजाणु है भूसो या पचे हुको घास रे महीने आपने नमी री मात्रा जो है 15-20% अधिक नहीं वेणी चावे है। अगर अणुवत्ती अगर नमी भी तो आपने जो भी चारो है वंट पे फफूंद लाग सके और या जो फफूंद वेगा वह आपने ठंडा चुपारे वास्ते बहुत ही बना रहे स्वास्थ्य वास्ते हानिकारक वेगा सा। तो अणी बात रो आपने किसान भाई बहना ने ध्यान रखनो है और हरा चारा रो प्रबंधन कर रिया और संरक्षण कर रिया है तो वो भी बतावा कि सब पहला तो आपने किसान भाई बहना ने यूएस कांगा वर्कर और मौसम है तो साइलेज वने लेनो है क्योंकि वर्का रे मौसम रे महीने चारा री कमी वही जावे वणु बचवा रे वास्ते अदपको मक्को है ज्वार है बाजरो चारो है अणा ने काटीन साइलेज रे गड्ढा रे महीने दबे देनो है और पच्चे अंडे महीने हरो चारा री उपलब्धता जो है वह अपने साल भर तक वणी रहेगा। अगर साइलेज वणी देगा तो अपने किसान भाई बहना ने जो है हरा चारा री कमी नहीं वेगा तो ढांडा चोपारे वास्ते जो है यो आराम आसानी उपलब्ध वेगा और वणा ने देखो सा टेम टेम पे वणा ने ढांडा चोपारे चारों वे आराम देता रहेगा सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो अणी जानकारी ने आपा जारी रखांगा और वण्यू पहला आपा एक और राजस्थानी गीत अपना किसान भाई लोगों ने हुणाई दा सा।
0: हाँ सा।

0: तो पूजा भाई सा,
1: हाँ सा
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है किसान भाई बहना ने हुनायो सा। और देखो सा कि जा जानकारी जा चाल रही है आपा बात कर रहा हा कि बरसातू पहला चारा रो प्रबंधन जो है वो करी लेनो चावे, तो वणी बात ने जारी राख रहा हा। और बतावा कि देखो जल भरावो वंचाव भी करनो है, जिस तरह आपा किसान भाई बहना ने कही सका कि जना खेता में चरवारो जो जगह है जणी में पानी भरी जावे, बणी खेत्र महीने अपने जल निकासी रो उचित प्रबंधन कर लेनो है ताकि हरो चाड़ो जो है वो सड़े नहीं और गले भी नहीं सा।
1: हाँ जी बात करो भाई सा। और देखो सा हेरो निर्माण भी अपने करनो है सा, फलीदार चारा जिससे कि बर्सिम वे गयो लूटसन वे गयो अने छाया में हुके हे वणे लेनी, पच्चे आपने छाया में हुके लेनो है जणू के साल पर आपने आसानी आपने ढांडा चोपा ने दे सकासा। और वर्कर टेम पशुआ ने आहार दे रहा तो अंडे महीने कई कई वातारो ध्यान रखनो है, देखो डायरियाऊ बचाणु है। वर्कर टेम अचानक हूँ देखा मात्रा में हरो चारो नेपियर घास या पेरा घास वेवे अंडे खवामो आपने पशुआ ने दस्त वे सके डायरियो वे सके अने हरा चारा ने महीने आपने हुकेन पच्चे भूसो डालनो है सा। खनिज लवण री वात करा तो ढांडा चोपा ने आहार में एक 2% खनिज जो है खनिज लवण और नमक अवश्य मिलाना चाहे ताकि वनारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह मजबूत वणी तकी रहे। और लारे लारे किसान भाई बहना ने स्वास्थ्य और बाड़ारो भी प्रबंधन करनो है, साफ सफाई पर और ध्यान रखनो है। पशुशाला रे महीने जल भराव बिल्कुल नहीं मेणो देनो चाहे। और जो फर्श या जटे डांडा चोपा देखे आए बाड़ो है वटे आपने देखो हुक्को राखनो है, कीटाणु रहित राखनो है और टेम टेम पे डीडीटी रो छिड़काव करते रहनो है। और आपा देखा कि वर्कर टेम रे महीने पशुआ ने बिल्कुल अपने खुला रे महीने नहीं बांधनो है। और अगर आपा देखो वर्कर बहुत ज़्यादा है तो वणा ने निमोनिया या पचे सर्दी जुकाम वे सके, तो असारे महीने वणा ने हरा जो है वाड़ा रे अंदर रखा और वणा ने हरो और सूको चारो खिलाता रहेवा साथ। अणी वातारो किसान भाई बहन ध्यान रखेगा तो देखो सा आपने जो पशु है वे स्वस्थ रहेगा। और देखो सा कार्यक्रम रे महीने आया हाँ सरजू भाई सा, तो अभी आपको तो चलते चलते एक बढ़िया सो गीत और हुने था सा।
0: हाँ सा

0: तो पूजा भाई सा,
1: हाँ सा,
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत सुनायो सा, घनी हारी जानकारियां दीदी सा, घना हारा संदेश सुनाया सा, और देखो वाता चीता रे मैंने तो देखो पतो ही नहीं पड़ियो, बार घड़ी री आड़ी देखियो तो आनी कार्यक्रम आपाने चालवारो टेम वे गयो है सा, तो आपा चाला सा,
1: राम राम सा।

0: हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी उदयपुर है। समय मिला लें, 2:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा।

0: का इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय 3:05 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर शाम 5 बजे फिर आएंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।

0: पीएम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 3:55 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे सीधा प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त का भुगतान का वेस्ट बंगाल से, जिसे वो करेंगे। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कार्यक्रम में लिए चलते हैं, विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow. Truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed. India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
2: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक

0: बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and Gram Panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next. They are all happy and they wish to see the Prime Minister, and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than one

0: This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉ मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद विच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट

0: which will be government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government. And that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat.

0: That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered. You are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer. You can check your bank account. You can be a part of the Digital India mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support. They did not have the support of the raw materials. They did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvindu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। भारत केसरी, लौह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि।

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो पर्य

0: योजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन द लेबोरेटरीज दैट आर देयर. इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड. इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द मार्केट. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
0: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं.
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है. बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है. आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है. बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं. आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है. परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की

बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष। बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े

होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर
इसे आगे बढ़ा।

करने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावनाओं को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे,

इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को

नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है।

उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे-धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के भुगतान का सीधा प्रसारण, जिसे वो जारी कर रहे थे पश्चिम बंगाल से, और प्रसारण आप तक लेकर आए थे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।

0: SBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और श्रोताओं, फिल्म संगीत में लीजिए, आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत, कुछ कुछ होता है फिल्म से। संगीत जतिन ललित का और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। श्रोता लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाज़ें लता मंगेशकर और कुमार सानू की हैं और इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोता जी, सुनिए अगला गीत जिसे आपको सुनवा रहे हैं क्यों हो गया ना फिल्म से। साधना सरगम और उदित नारायण के स्वर हैं, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

साधना सरगम और उदित नारायण के गाए क्यों हो गया ना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं, आइए आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर।

शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा लीजिए, सुनिए ये गीत शफाकत अमानत अली के स्वर में फिल्म माय नेम इज़ खान से।

माई नेम इज़ खान, इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और लीजिए सुनिए अगला गीत, अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण के स्वरों में फिल्म दिल है तुम्हारा से, संगीत नदीम श्रवण का।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म जब हैरी मेट सेजल से। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

आशिक बनाया आपने फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
0: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहनें हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
3: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए

0: मतदान मतगणना इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित जेईसीसी में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई एसआईआर प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में बीएलओ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर बीएलओ और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि पीएम ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर

0: योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही SMS स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलूम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि DBT की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में BLO संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा NEET UG पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवरलाल जनागल को नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे, इसी लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले

0: श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरि मोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिलाजुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। बारा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए। पीएम किसान सम्मान निधि रा 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देशवी चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजू ली जावेला। देश भर में आज पुख्ता इंतजाम परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए भैला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 उम्बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौर 18,880 करोड़ रुपया उम्बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जिया कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत रकम जारी करण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी चियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 उम्बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी जी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावां माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रुपया उम्बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रुपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल फिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माए लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ਇਹ ਮੌਕੇ ਵੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਤਾਓ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਰੋ ਬੱਤੋਂ ਬੱਤੋਂ

0: फायदो लेवनरी अरज कीनी।
1: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: मुख्यमंत्री न्यारी न्यारी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावां रो फायदो लेवण वाला सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माए नौ सेना सारू देश माए बनाई जा तीन जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय ने पानी माए उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बियां रे खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माए काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब ए जंगी जहाज बनावन रा काम माए 232 एमएसएमई इकाई योगदान दिनो। केंद्र सरकार 16 भांतरी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाइयां बनावन और बेचण माथे तुरंत रोक लगाती नी है। सुप्रीम कोर्ट रा हुक्म पाछे जानकारां नी समिति कान्यू करी जी सिफारिशों ओ फैसलो करी चियो। समिति रे मुजब आ दवाइयां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भेवन री शंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों रा औषधि नियामकां और संबंधित एजेंसियां ने करडायूं रोक लगावन रा हुक्म दीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि भारत री साफ गोई सागर निपक्ष चुनाव प्रक्रिया माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। वे आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहो कि देश रा भरोसेमंद चुनाव प्रबंधन ने दुनियाई मान्यो है।
2: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान मतगणना इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी जो अपेक्षाएं थी वो बताई। जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजू हैला। इन ठीक तरीकाओं और साफ कोई सागा करावन सारू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज तैयारियां री परख कीनी। इनमें 2.5 लाख सुरक्षा कर्मचारी शामिल फिया। एनटीए रे मुजब नीट यूजी री परीक्षा देश रा 551 शहरा और प्रदेश माए 14 ठौड़ा ओजू ली जावेला, जिनमें 22,79,000 विद्यार्थी शामिल फैला। परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे 22 जून ताई रोक रहवेला। ओजू ली जा रही नीट यूजी परीक्षा सारू प्रदेश माए 25 जिला माए 577 सेंटर बनाई चिया है। राज्य माए करीब 2,09,000 उम्मीदवार आ परीक्षा देवेला। परीक्षा साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह सावचेत है और सीआरपीएफ री ओरों हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। प्रदेश में साफ सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन ने बढ़ावो देवन सारू पहली दफा बिजली चालन वाली बसा चलाई जावेला। प्रधानमंत्री ई बस सेवा रा तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर 47 ई बसा ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। अमर जवान ज्योति माथे राखी जिया ई कार्यक्रम में 29 बसा राजधानी जयपुर और 18 बसा भीलवाड़ा ने दीरी जी। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि ई बसाओं हवा माए गंदगी कम घुलेला। श्री शर्मा ई बस माए अमर जवान ज्योति स्टेट हैंगर ताई सफर ई कीनो। ध्यानयोग है कि पीएम ई बस योजना रातेत प्रदेश ने 1150 बसा दी चावेला योजना

0: नारा पहला दौर में प्रदेश रा 8 जिला में 675 ई बसा चलाई जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल बीकानेर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वह लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना करेला। ई गाड़ियों गुजरात और राजस्थान में सैर सपाटारी खास खास ठोड़ा सीधो संपर्क फै सकेला। ई पाछे केंद्रीय मंत्री जयपुर पूगर खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने रवाना करेला। श्री वैष्णव रो खातीपुरा स्टेशन में थे मेगा कोचिंग टर्मिनल रो उद्घाटन करन रो ही कार्यक्रम है। वह 41 नाना और मझोला स्टेशना में थे प्लेटफॉर्म ने मोटा बनावन रा काम और 16 स्टेशना में थे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जनता ने सौंपेला। मानव प्रदेश रा न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन मथे मुसाफिर सारू विकसित करी जय सुबिता जनता ने सौंपण रोई कार्यक्रम है। 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। इनरो ई साल रो मुद्दो स्वस्थ आयु के लिए योग राखी जियो है। भारत सागे आखी दुनिया माए योग दिवस मनावन रे दौरान प्रदेश माए भारत रा 232 दूतावास माए योग सत्र राख्या जावेला। राष्ट्रीय स्तर रो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में कोलकाता में राख्यो जावेला। ई बीचे आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कहो के सरकार काम रे ठोड़ा माथा योग करण बाबत थोड़ी देर री छुट्टी सारू वाई ब्रेक ऐप ही शुरू कीनो है। आयुष मंत्रालय री ओर विकसित करी जाई मोबाइल एप्लीकेशन काम बीचे 5 मिनट री छुट्टी लेर योग कर लोग खुद ने तरोताजा और तनाव मुक्त रख सके है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में आए सगला जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग कार्यक्रम रखा जावेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो सिरोही जिला रा अबू राज माए राख्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रोई इन माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम माए राख्या जावन वाला योग दिवस कार्यक्रम माए शामिल भेला। आयुष मंत्रालय री ओर राजधानी जयपुर रा जंतर मंतर माए भेड़ो योगाभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। ईसा गई SMS स्टेडियम अल्बर्ट हॉल और जल महल समेत शहर री खास खास ठोणा योगाभ्यास कार्यक्रम राख्या जावेला। ई बीचे नई दिल्ली शुरू करी जिया 100 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम रा तेत आखर राज्य माए योग जागरूकता कार्यक्रम राख्या जा रहा है। आज डीगर जैसलमेर माए योग जागरूकता रैली निकाल और निरोगा रेवन रो संदेश दियो चियो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए PM किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए BLO संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट UG 2026 परीक्षा काल ओजू ली जावेला। देश भर में आज पुख्ता इंतजाम री परख करी ची। और 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए होगा उनका खास कार्यक्रम खेती और घर।

0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगला ही किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम राम, राम सा।
0: देखो सा चौपाल रो टेम भी और आप भांत भांत री जानकारी लेने किसान भाई बहना वाते देखो चौपाल में आया और जब चौपाल में आवा तो देखो खेती बाड़ी संबंधित बातचीत करा वंडे लारे मौसम संबंधी जानकारी दे और सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही वंडे लारे लारे अन्य जो योजना है या जानकारी है वह आप किसान भाई बहना ने करा वहाँ सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो आज जो आप चौपाल री बात में लेने आए हैं कि पशुओं रे वास्ते चारो उत्पादन और कार्यक्रम है खेती और घर अणी में आपा सब जानकारी लेने आवा किसान भाई लोगा रे वास्ते। तो सब बढ़िया एक जानकारी आज देवा कि आज जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना री 23वीं किस्त जो है हंगले किसान भाई लोगा रे खाता में आएगी है सा। तो किसान भाई लोग वने ले ने आपने काम महीने ले सके सा। खेती बाड़ी में बार बुवाई रा काम भी चालू वही गया है मक्की वणी रा तो वणी महीने हल हकई रा कणी में भी बीज लावा में भी वना किसान भाई रे सरकारी तरफ देखो यो बहुत ही बढ़िया फायदा री बात है सा।
0: बिल्कुल सा जटे देखो खेती बाड़ी करा मंडे लारे लारे किसान भाई देखो पशुपालन भी करे और पशुआ रे बातें देखो अगर आप भोजन री बात करा तो उनमें चारों जो है बना रहे अच्छा स्वास्थ्य और अधिक दूध उत्पादन रे बातें बहुत जरूरी है और अण में जटे गुणवत्तापूर्ण हरा चारे री बात करा तो आप जाना कि आपने अटे देखो पशुआ रे बातें चारा उत्पादन में देखो मुख्य रूप दो ही मौसम खरीफ और रबी जो है अण में देखो आप बना रहे बातें चारा री व्यवस्था करा तो चारा री फसल ने मुख्य रूप आप दो भाग में बांट सका दलहनी जो प्रोटीन भरपूर वे और गैर दलहनी जो ऊर्जा और फाइबर भरपूर वे सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो खरीफ ऋतु री जटे आप बात करा तो गर्मी और मानसून रो मौसम ज्वार ये सूखिया ने सहन करवा वाली और सब लोकप्रिय फसल है। एमपी चरी और एसएसजी जैसी किस्मा बहु कटाई रे वास्ते बेहतरीन है। और जटे आप बाजरा री बात करा तो कम पानी वाला जितना भी क्षेत्र है वटारे वास्ते सब बढ़िया उपयुक्त है सा। और आप अगर मक्का री बात करा तो दुधारू पशुओं रे वास्ते और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक वेवे है खास करीने अणीरे महीने साइलेज बनायो जावे सा।
0: और जटे देखो लोबिया दलहनी री अगर आप बात करा तो उनमें प्रोटीन री मात्रा बहुत अधिक है जड़े मक्का या ज्वार लारे मिले ने वोणो जो है किसान भाई बात है अच्छो रे। जटे नेपियर घास री अगर आप बात करा तो यह एक बार लगा रे केड़े साल में 3-4 दान देखो कटाई दे और हरो चारो किसान भाई ने प्रदान करे। और जटे रबी ऋतु री बात करा तो सर्दिया रो मौसम वे तो उनमें बरसिम जो है वह एक दलहनी फसल है और अन्य चारा रा राजा रे रूप में भी क्यों जावे क्योंकि उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम वे जो दूध बढ़ावा में मदद करे और अंडी चारों पांच कटाई जो है किसान भाई आसानी कर सके है।
1: बिल्कुल सा। और झटे आप देखा कि आप जहरी बात करा तो या सर्दियारो एक बेहतरीन ऊर्जा भरपूर चारो है। और अन्य सारे जटे आप जोरी बात करा तो रजगो जो है वो एक बहुवर्षीय दलहनी फसल है जो ठंडा और सूखा क्षेत्र में अच्छो मनो उत्पादन रेवे। और रजगो जो है जो आप गाय भैंसा ने खवा तो बनियो दूध उत्पादन भी बढ़िया वेवे और उन्नत चारो उत्पादन रे तरीका ने अपनाई ने किसान भाई लोग जो है एक पूरा साल भर रो चारो जो है प्राप्त करी सके है सा।
0: और जटे देखो मिश्रित खेती री अगर आप बात करा तो हमेशा एक दलहनी जिस तरह की लोबिया या बरसिम है या पचे एक गैर दलहनी फसल जिस तरह मक्का है या जई है अन्य अगर आप मिलाई ने बोवा तो अणु पशुआ ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संतुलित जो मिश्रण है वो भी मलतो रहे। और जटे रिले क्रॉपिंग रे अगर आप बात करा तो अणी तकनीक को पूरा साल में एक असो चक्र बनायो जावे जणु खेत कदी खाली नहीं रहे और हर महीने जो है वो हरो चारो किसान भाई ने मलतो रे वैसा।
1: बिल्कुल हाची बात कही रहो सा। और देखो उचित समय पे कटेरी जटे आप बात करा तो चारारी फसल ने बहुत ही ज़्यादा पाकवा नहीं देनी है। उदाहरण रे वास्ते कही सका कि जिस तरह ज्वार है और बाजरा रे महीने यदि 50% फूल आई जावे तो कटई रे वास्ते सबू सही समय वेवे और अणी समय चारा में पोषक तत्व सबू ज़्यादा वेवे है सा।
0: और जटे देखो चारा रे संरक्षण रे अगर आप बात करा तो यदि चारो हरो वे और जरूरत ज़्यादा उपलब्ध वे तो वरने भविष्य में जिस तरह की अबार देख रहे हैं आप गर्मी रो मौसम या पचे सूखा री टेम जो है अन्य अगर आप वचे न रखा तो वो किसान भाई बहना वाते लाभ वे अन्न में देखो दो तरीका एक है साइलेज और दूसरों है। जटे साइलेज री बात करा तो मक्का ज्वार और बाजरा ने छोटा छोटा टुकड़ा में काटने जो है हवा रहित गड्ढा में दबाई ने किण्वन प्रक्रिया जो आपने जो फर्टीन मेंशन वे वन्ने करावा तो अन्य चारा रो अचार भी कहाँ और दुधारू पशुआर वाते अमृत रे समान वे वे है।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हूँ सा। और देखो उत्पादन बढ़ावा रे वास्ते किसान भाई लोग जो है वो अन्य कार्य भी कर सके। और अन्य में जो हेरी बात आप करी रहे हाँ कि बरसीम या रजको जैसी चारा ने सुखाई ने वनारी नमी ने 15%

0: कम कर दियो जावे है। जण्यू कही वेवे की वणी ने लंबा समय तक आपा सुरक्षित राखी सका हाँ। और जटे आपा उत्पादन री बात में कार्य में कर रहे हाँ कि बीज उपचार री बात, तो अणी रे मैं मैंने बहुवारो तरीको जो है कि बहुओं पहला जो राइजोबियम कल्चर हूँ उपचारित करी लेनो है और जदी जई ने मनो लाभ मिलेगा गया कि दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ेगा सा।
1: और जैसे देखो सिंचाई की बात करना तो गर्मियों में 10-15 दिन रे अंतराल पर और सर्दियों में 15-20 दिन रे अंतराल पर अगर अपन सिंचाई करा तो उनमें चारा में जो रसीलोपन है वो बने रहे और उर्वरता री जटे बात करा तो नाइट्रोजन और फास्फोरस रो सही संतुलन किसान भाइयों ने कटाई रे बाद फसल दोबारा तेजी बढ़वा में भी मदद करे है सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो सा कि नानू भाई अत्रो प्यारो सो कार्यक्रम महीने और अत्री बढ़िया जानकारी जो है आपा किसान भाई बहना ने करी कि पशुआरे वास्ते चारो उत्पादन, तो बहुत बढ़िया जानकारी रे लारे लारे। देखो अत्री बढ़िया जानकारी तो आपा लावा, पर देखो सा नानू भाई कार्यक्रम में आवा तो मनोरंजन भी जरूरी है सा, तो आप कहो तो एक राजस्थानी गीत सुनाई ने अपना किसान भाई बहना रो आपा मनोरंजन करावा सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो देखो सरजू भाई साहब, या तो होना प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। अबे ता देखो मौसम संबंधी जानकारी और सामान्य कृषिगत जानकारी। तो मौसम विज्ञान विभाग जो उदयपुर प्राप्त सूचना रहे आधार पर देखो आगामी दिन में जो है देखो आपा कैसा किसान भाई ने तापमान में उतार चढ़ाव बने रहेगा। और जटे अधिकतम तापमान रे अगर आप बात करा तो 35.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 24.7 डिग्री सेल्सियस। और जटे देखो हवारी गति रे बात करा तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगु चाल वारी संभावना है। और जटे आर्द्रता रे बात करा तो वह 71% रे वारी संभावना है। और देखो तापमान में उतार चढ़ाव तो चाले है, लेकिन अंडे लार लारे किसान भाई जो देखो खेती बाड़ी में काम करे तो वना ने एनी टाइम पे खेती बाड़ी में कई ध्यान रखना मंडी बात भी करा सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखिए खेती बाड़ी में तो ध्यान रखवारी बात है कि आपा जो अबार आपने सब्जियां री बात है तो वणी महीने जिस तरह की कही सका कि भिंडी री बात करा आपा तो भिंडी महीने वर्षा ऋतु फसल री बुवाई जून जुलाई महीना रे महीने करी लेनी है। और भिंडी री पूसा A4 परभनी क्रांति अर्का अभय अर्का अनामिका वर्षा उपकार किस्मारो 8-10 किलो बीज प्रति हेक्टर री दर उवनी बुवाई करी लेनी है सा।
0: और जटे देखो टमाटर री बात करा तो टमाटर री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौध ने देखो खेता में रोपाई रो पूर्व कार्बन डिज में ट्राइकोडर्मा रे घोल में पौधारी जड़ा ने 20-25 मिनट तक उपचारित करने वंटे गड़े पौधारी आपने रोपाई करनी है सा।
1: और जटे आपा फूल गोभी री बात करा तो आगे थी किस्मारी बुवाई देखो कि अबारणी जून रे अंतिम तक आपा करी सक्रिया। हाँ तो अन्नी जो किस्मारी बात करा तो अलरी कुंवारी पूसा कातकी पूसा दीपाली पूसा अली सिंथेटिक ये सब किस्म आपा ले सक रहे हैं।
0: और जटे देखो बैंगन री बात करा तो बैंगन री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधने कतारू कतार बीज 60 सेंटीमीटर

0: पौध पौधर बीच 50 सेंटीमीटर अंतराल पर राखता लगा अपने लगानो है और खेत्र तैयारी टाइम गोबरी खाद 120 रुपये 150 क्विंटल, नत्रजन 40 किलो और फास्फोरस 80 किलो, पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टर दर आपने देनो है सर।
1: बिल्कुल सर। और मिर्ची री नर्सरी में बुवाई रो 40 से 45 दिन बाद पौध रोपण रे वास्ते तैयार भी जावे तो रोपई कतारा में 60 × 30 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी हिसाब अपने हाँज पड़वा समय करे और तुरंत बाद सिंचाई कर देनी है। पौधा में 40 ग्राम केवा की 2 लीटर पानी में घोल बने 15 मिनट डुबोई ने वनी रोपाई करी लेनी और मरचा री हाउ उपज प्राप्त करवारे वास्ते 20 से 25 टन गोबर री खाद मिलानी है वनी महीने।
0: और खरीफ फसलों में देखो खास तौर आप देखा दलहनी फसलों में कातरा रो प्रकोप है तो कीट री लट वाली अवस्था ही फसल ने नुकसान पहुँचा तो अनेक कीट पतंगा ने नष्ट करवा रहे बात है प्रकाश पाश रो आप उपयोग कर सका। और अन्य देखो मानसून री वर्षा प्रारंभ होता ही खेत री मेड़ और चरागाह पर गैस री लाइटेन या पचे बल्ब जलानो है और अंडे में नीचे 5% मिट्टी रो तेल पानी में मिलने कणी एक बड़ा बर्तन में रख देनो ताकि प्रकाश पर कातरा रा पतंगा जो है वह आकर्षित होगा और नीचे मिट्टी रा तेल में मिलने पानी में जाइने भी मर जाएगा सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। और देखो कि अणीरे महीने चारों जो है चारा रे वास्ते जटे आप बात करा कि पशुपालन रे वास्ते तो अणीरे महीने चारा रे वास्ते ज्वार है लोबिया है बहु कटाई वाली चरीरी बुवाई है आना ने सब करी लेनो चावे। वर्का नी व्यवहारी स्थिति में पहला पलेवो देने बुवाई करी लेनी है। लोबिया रे वास्ते 35 से 40 किलोग्राम, ज्वार रे वास्ते 40 से 45 किलोग्राम और बहु कटान वाली जो चरी है बनने वास्ते 20 से 35 किलोग्राम बीज रे हेक्टर रे आवश्यकता वेवे तो क्यों है कही वेवे कि अणी तरीकों अगर किसान भाई करेगा तो चारा री गुणवत्ता और उपज बढ़ावा महीने बढ़िया रहेगा सा।
0: बिल्कुल देखो यह तो किसान भाई ने दीदी आप सामान्य कृषिगत जानकारी और मौसम संबंधी जानकारी। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा तो को तो एक प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत होना सा।
1: हाँ सा।

0: तो देखो सरजू भाई सा यो होने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। देखो सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है पर में देखो एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह योजना कई हो या कई प्रकार किसान भाई बहना वाते लाभदायक वे सके अंडी जानकारी करावा सा।
1: हाँ सा तो देखो सा नानू भाई जट्या पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन री बात करी रहा। हाँ तो यो भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 रे महीने शुरू की दी गई एक प्रमुख योजना है। अणीरो मुख्य उद्देश्य देश में स्वदेशी दुधारू पशुआरी नस्लारो संरक्षण और मणारो वैज्ञानिक तरीकों विकास करनो है ताकि दूध रो उत्पादन बढ़े और लारे लारे किसान भाई लोगों री आमदनी में भी सुधार वैसा।
0: बिल्कुल सही कह रहा। और यह योजना जो है वर्तमान में देखो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत एक महत्वपूर्ण हिस्सों है। अणि योजना रे जटे मुख्य उद्देश्य रे अगर आप बात करा तो अण में देखो पहला उद्देश्य नस्ल सुधार और विकास। गीर, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज जैसी उच्च क्षमता वाले स्वदेशी गाय जो है वनरी नस्लारो विकास करना अंडो मुख्य उद्देश्य है।
1: देखो सा जटे दूध उत्पादन में वृद्धि री बात करा तो वैज्ञानिक तकनीकारो उपयोग करीने पशुआरी दूध देवारी क्षमता ने बढ़ावणो है। गुणवत्तापूर्ण जणी में आपा उपलब्धता किसाना पे उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाला सीमेन है जो कृत्रिम गर्भाधान री सुविधा पहुँचाणो है। लारे लारे रोग मुक्त पशुधन देश में पशुआ ने बीमारियां नु वंचावणो स्वस्थ पशुधन तैयार करनो।
0: बिल्कुल सही कह रहा। और जटे देखो आप बात आ करा आप अगर उन्नत प्रजनन तकनीक रे तो उनमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन रे अगर आप बात करा तो अणि तकनीक रे उपयोग ने बढ़ावा दियो जेरो जन में 90% तक केवल बछड़िया ही पैदा हुए जनों की किसाना पे अनुपयोगी पशुआरों जो बोझ है वो कम हुए और भविष्य में दूध देवा वाला पशुआरी संख्या में बढ़ोतरी हुए। और जटे IVF तकनीक रे अगर आप बात करा तो उच्च नस्लरी गाय रहे अंडा और सांड जो है वनाने देखो तैयार करने वने सामान्य गायों ट्रांसफर की दो जावे जनों की कम समय में बेहतरीन नस्लेरा बछड़ा जो है वे पैदा किया जा सके।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। और अनमें मुख्य घटक री आपा बात करा तो सरकार द्वारा देश रा प्रमुख क्षेत्र में एकीकृत पशु संसाधन केंद्री स्थापना अनंत प्रजनन तकनीका में आपा देखा कि अनमें सीमेन IT तकनीक अपनावणो राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान।

0: कार्यक्रम द्वारा किसानों ने मुफ्त या कम कीमत पे सेवा प्रदान करनो जटे पशुपालका और सरकारी समितियों में प्रतिस्पर्धा उत्साह बढ़ावा वास्ते सरकार द्वारा प्रति वर्ष गोपाल रत्न पुरस्कारों प्रोत्साहित करनो है। और अबे देखो सा कि पशुपालका रे किसानों ने जो लाभ री आपा बात करा नानू भाई, तो लाभ री बात करा तो देखो अणी में कई कई लाभ है सा।
1: देखो जेटे आप लाभ री बात कर रहे हो तो अणमें देखो बात करा तो कम लागत में अधिक मुनाफो, क्योंकि आपा सब जाना कि स्वदेशी गाय में जो स्थानीय जलवायु और बीमारियों ने सहवारी क्षमता जो है विदेशी नस्ला में

0: आप लाभ री बात कर रहे हो तो उनमें देखो बात करा तो कम लागत में अधिक मुनाफा, क्योंकि आप सब जाना कि स्वदेशी गाय में जो स्थानीय जलवायु और बीमारियों ने सहवारी क्षमता जो है विदेशी नस्ला में कई अधिक है, तो अणा पर रख रखाव और इलाज रो खर्चो भी कम आवे। जटे ए टू दूध रे अगर आप प्रीमियम दाम रे आप जटे आमदनी रे बात की थी तो उनमें स्वदेशी नस्ला में दूध में ए टू बीटा कैसिन जो है वो प्रोटीन पायो जावे, झंडी बाजार में काफ़ी मांग भी और अंडा दाम भी जो है वे अच्छा मल है।
1: बिल्कुल सा, घर बैठा नस्ल सुधार सरकारी सब्सिडी रे कारण किसान ने बहुत ही कम दर आपे उच्च कोटी रे सीमेन उपलब्ध वे जावे, झणियों वणारी आवा वाली पशुआरी पीढ़ी अधिक दूध देवा वाली वणी जावे सा।
0: तो देखो आपा सब किसान भाई बहना ने कहना चाहवांगे कि जो मुख्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो है अणि योजना रो लाभ उठाने आप खेती बाड़ी में तो देखो आमद कमाओ, लेकिन पशुपालन रे साथ साथ भी देखो आपने आमदनी ने दुगुनो कर सको। और जटे आमदनी दुगुनो री बात करा तो देखो खुशियाँ ही खुशियाँ आवे, और खुशियाँ री जटे बात आवे तो राजस्थानी लोक संगीत भी बहनो चावे सा।
1: हाँ सा,

0: तो देखो सरजू भाई साहब, गीत तो घणो चोखो होणियो। और देखो अपने साल भर देखो सर्दी वो गर्मी वो वर्षा वो किसान भाई बहन देखो फसल रो काम करे ही करे, लारे लारे पशुपालन भी करे। और जटे देखो पशुपालन रे आप बात करना तो देखो अबार तो गर्मी है, लेकिन थोड़ा टाइम कड़े देखो मानसून आ जाएगा, तो वही टाइम वर्षा रानी मौसम में जो किसान भाई बहन है वे कई प्रकार अपने पशुआ रे वाते चारों संग्रह कर सके। अंडी बात को तो आप जानकारी दासा।
1: हाँ सा, देखो वर्षा ऋतु मानसून रे दौरान एक आड़ी ने तो जटे चारों ओर हरियाली वेवे और प्रचुर मात्रा में हरो चारो उपलब्ध वेवे। वटे इस दूसरी तरफ लगातार बारिश के कारण चारा ने सड़वो वंचावणो भविष्य में सर्दियाँ और गर्मियों के वास्ते वनारो संग्रहण करनो एक बड़ी चुनौती वेवे है। अणी मौसम में चारा रो सही प्रबंध

0: अभिनंदन संग्रहण करवा रे वास्ते मुख्य रूपों दो तकनीकों उपयोग कियो जावे है जणी रे महीने साइलेज और है।
1: बिल्कुल सहज है। देखो साइलेज रे अगर आपा बात करा तो देखो आपा भी जाना कि आपने घर में देखो कतरी बार सब्जी वगैरह वे तो वणु आपा भोजन करा, लेकिन जण दाण सब्जी नहीं वे वणी टाइम देखो आपा अचारू भी कतरी दाण भोजन करा। तो जटे देखो आपा साइलेज री बात करें तो वो भी एक प्रकार रो चारा रो अचार है। और देखो किसान भाई बहन अगर वनने सही तरीका वणई दे तो जदी वंडी जरूरत हुए तो वंडो उत्तम विधियों में उपयोग कर सके। तो वर्षा ऋतु यदि आवे और यदि हवा में नमी बहुत ज़्यादा आवे तब चारा ने देखो सुखाणो मुश्किल वे। असम में साइलेज तकनीक जो है वह सबसे बेहतरीन है क्योंकि अंडे तहत देखो चारा ने हवा रहित स्थिति में दबाई ने वंड काफ़ी टाइम तक सुरक्षित राखियो सके।
0: बिल्कुल सा देखो सा आनी महीने के जमीन ऊपर उपयुक्त फसला मक्का ज्वार बाजरा हाइब्रिड नेपियर घास जणीरे महीने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्ट की मात्रा ज़्यादा वेवे वर्णावरी विधि री जटे आप बात करा नानू भाई तो आपने किसान भाई बहना ने आप बतावा कि फसला ने फूल आवारे समय पे यदि नमी जो है लगभग 60-75 वे जावे तो वणे ने काटी लेनी है। चारा ने कूटी काटवा वाली जतरी भी मशीन है वणी ने हाफ कटरू लेने 1-2 इंच रे छोटा टुकड़ा में काटी लेनी है। जटे आप जमीन रे उपरे वणिया तका कंक्रीट और गड्ढा री बात करा तो या बड़ा बड़ा छोटा छोटा मजबूत प्लास्टिक बैग्स में चारा रे लेने वाला ने परता में भरी देना है सर।
1: बिल्कुल सही। देखो यदि चारा ने आपा कुट्टी ने छोटा छोटा टुकड़ा में काटने वाला ने एक परत रूप में बिछे देंगा और हर परत ने देखो पैर या पचे ट्रैक्टर की सहायता जो आपने अच्छी तरह दबाई देना है ताकि पूरी हवा बाणे निकल जाए और गड्ढा या बैग रे ऊपर तिरपाल या मिट्टी पूरी तरह आपने एयर टाइट बंद कर देना। जणी प्रकार देखो आपा अपने अचार ने सुरक्षित रखा हाँ वणी प्रकार ये पशुआरे वाते चारा रो अचार है। और अंडे तैयार व्यवहारी अगर आप बात करा तो लगभग 45-60 दना में यो देखो पाक ने तैयार वही जावे और अंडे कई महीना तक जो आपा है किसान भाई जो है पशुआ ने सुरक्षित राखी ने देखो वड़ाने खिलाई सके है। और जटे देखो आगे अगर आप बात करा दूजा चारा रे तो वह है
0: बिल्कुल सा जटे आपा सूखा पौष्टिक चारा री आपा बात करी रहा हाँ अगर बारिश रे वच में थोड़ा दना रे वास्ते हाउ धूप कम 2-3 दिन तक निकले और दलहली फसला ने सुखाई ने हे वणायो जाई सके उपयुक्त फसला री बात करा लोबिया है गुआर है राइस बीन है। और जटे वणावारी विधि री आपा बात करा तो चारा ने सुबे रे समय तो काटी लेनो है और खेत में ही पतली परता में फैलाई देनो है।
1: बिल्कुल सही। और जटे देखो दिन में वणा ने 1-2 बार आपने पलटने राखनो है ताकि वो कई वेगा समान रूप सूख जाएगा और अगर वो गिलो वेगा तो कटे न कटे खराब वेगा। और यदि चारा में नमी घटने 15% तो कम रह जाए और चारों छुआ पे देखो कुरकुरो लागे लेकिन वंडी पत्तियां टूटे नहीं यदि वंडे इकट्ठो कर लेनो चावे। अंडे केड़े अंडे गट्ठर वणाई ने कणी सूखा और ऊंचा स्थान पर या पचे कहाँ कि आपा शेड जो है पतेड़ा वंडे नीचे देखो आपने रख देना ताकि बारिश रो पानी जो है देखो वो वण में नहीं जाएगा और वो सुरक्षित वणियो रहेगा सा।
0: बिल्कुल सा। और वर्षा ऋतु में हरा चारा रे कीचड़ और फंगस वंचाव रे वास्ते वना उपाय करना है कि ऊंचा स्थान पे भंडारण सूखा चारा ने हमेशा जमीनों कम 1 फीट ऊंची परता पे राखी देनो है और दीवारा ने सटाई ने राखनो है ताकि सीलन नहीं लागे। जटे फंगस बचाव री बात आपा करी रहा हाँ तो वणी रे महीने अगर घिलो हरो चारो
1: जो है वन्ने अगर आप शेड रे अंदर ढेर लगे रख दांगा तो वणु गर्मी पैदा होगा और फंगस लाग जाएगा। तो अणी टाइम पे देखो अपने वणा दीवारों सटाई ने नहीं रखना और असो चारों पशुआ ने खिलावाऊ देखो वे बीमार भी बह सके और चारों जो है हमेशा फैलाइन रखनो ताकि वो सूखो वणियो रहे।
0: बिल्कुल सा। देखो यूरिया री बात आप करा कि मोलासेस ब्लॉक री तो वर्करा मौसम में अगर सूखो चारा री उपलब्धता कम वे या ज़्यादा वे तो वणी ने अपने पौष्टिकता बढ़ावा रे वास्ते यूरिया चार्ट ब्लॉक रो उपयोग जरूर करी लेनो चावे। जटे आप वर्षा ऋतु महीने कई करनो चावे कई नहीं करनो चावे या जानकारी आप करा कि किसान भाई लोगों ने तो जो वर्षा ऋतु में जो करनो चावे वनी बात आप करा कि बहुत ही ज़्यादा चारा ने साइलेज बैग में पैक करनो है चारा रे गोदाम में वेंटिलेशन हवारी आवाजावी राखनी है और पशुओं ने खनिज मिश्रण नियमित रूप दे देनो है सा।
1: और जटे देखो वर्षा ऋतु में देखो ध्यान रखवारी अगर आपने बात करनी है तो देखो जो चारा री आप बात की थी वरने ऊंचा ढेर पे आपने खुलो छोड़ना है क्योंकि वन में अगर नमी रहेगा तो वो खराब हो जाएगा लेकिन वरने तरपालू ढांकने रखनो है। और बारिश के टाइम पानी में भीगे लगो हरो चारो आपने तुरंत नहीं खिलानो है क्योंकि फंगस या फफूंद लगे लगो अगर चारो आपा खिलावांगा तो वणु देखो

0: जो पशु है वो मांदगी रो शिकार वही सके। तो अना सब वातारो देखो किसान भाई अगर ध्यान रखेगा और वर्का रहते हुए पहले ही देखो अगर चारा संग्रहण कर लेगा तो वह अपने जो भविष्य में चारा रिजेट कमी वेगा वही टाइम वे वनारो उपयोग कर सकेगा सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो नानू भाई अत्री बढ़िया जानकारी आपा लेने आया और अपना किसान भाई बहना ने अत्री बढ़िया बढ़िया जानकारी दी थी। तो देखो किसान भाई बहना ने देखो थोड़ा सा गीत गुंजन री दुनिया में ले चला और राजस्थानी गीत होने दासा।
0: बिल्कुल सर।

0: तो देखो सरजू भाई साहब, यो तो उन्हें प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में देखो आज रे दिन रे अगर आप बात करा तो आज है 20 जून यानी विश्व शरणार्थी दिवस।
1: देखो सा जटे आपा विश्व शरणार्थी दिवस री बात करी रिया। हाँ नानू भाई, तो आपा किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि हर साल 20 जून ने पूरी दुनिया में विश्व शरणार्थी दिवस मनायो जावे है। योदन वणा लोगा रे साहस शक्ति दृढ़ संकल्प रे सम्मान देवार वास्ते समर्पित है। जणी ने अपने देश में युद्ध हिंसा उत्पीड़न मानवाधिकार रे उल्लंघन रे कारण आपणो घर बार छोड़ी ने कणी दूसरा देश में शरण लेवार वास्ते मजबूर वेणो पड़े है। अणी दिवस री शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा करी गई ही। पहली बार यो दिवस 20 जून 2001 में मनायो गयो थो और 1951 में शरणार्थियों री स्थिति संबंधित कन्वेंशन री 50वीं वर्ष

0: वर्षगांठ उपलक्ष्य में शुरू की दो होसा।
1: बिल्कुल सही। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त अणि दिन वैश्विक स्तर पर कार्यक्रमों रो आयोजन करे है। अणि दिवस ने मनावरे उद्देश्य री जटे बात करा तो दुनिया भर में शरणार्थी रे प्रति समाज में नफरत या भेदभाव ने कम करने वनारे प्रति सहानुभूति और स्वीकारार्थी री भावना ने पैदा करना है। और दुनिया भर में शरणार्थी री बदतर स्थिति अनेक संघर्ष और वनारी बुनियादी जरूरत जिस तरह की भोजन है, आश्रय है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, वनडे प्रति लोगों ने सरकार रे प्रति जागरूक करना है। सा
0: देखो सा नानू भाई, नीतियां में सुधार, वैश्विक नेता सरकार में असी नीतियां बनावरे वास्ते प्रेरित करनो, जणी ने शरणार्थियों ने सुरक्षा आगे बढ़वा में सुरक्षित अवसर मिली सके सा।
1: तो देखो या तो कीधी विश्व शरणार्थी दिवस पे बात जानकारी, और देखो कार्यक्रम में चालता चालता को तो एक प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत और होना सा।
0: हाँ सा।

0: तो देखो सर जी, वैसा ही होता है प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत। और देखो घड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रमों चालवारो अपनो टाइम वेरो तो पाछा मिलवारे वादारे साथ आज्ञा दो नानू भाई। और
1: सरजू
0: जय
1: श्रीमाली ने
0: जय जवान
1: जय किसान।

अभी किसान भाइयों ने सुना कार्यक्रम खेती और घर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। आइए आपको ले चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत।

अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के स्वरों में अभी आपने गुप्त फिल्म से ये गीत सुना। संगीत वीजू शाह का था। और श्रोताओं ने जी सुनिए अगला गीत नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाज़ में। संगीत नुसरत फतेह अली खान का और फिल्म है कारतूस।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप

0: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

श्रोता लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत से सजा चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के स्वरों में।

श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का अगला गीत श्रेयस पुरियान के स्वरों में कि श्रेयस के संगीत से सजा अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म एनिमल से आवाज़ अरिजीत सिंह की।

आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और श्रोताओं जी सुनिए अगला गीत श्रेया घोषाल के स्वर में, कबीर सिंह फिल्म से।

0: आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
1: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
0: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यहीं आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
0: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत था और इस गीत को गाया था शेखर सलीम और नीति मोहन ने। श्रोताओं नीचे सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह और सचिन जिगर के स्वरों में फिल्म भेड़िया से।

लापता लेडीज, ये है अगली फिल्म जिसे आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ और इसे संगीत से सजाया है राम संपत ने।

श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का आखिरी गीत जिसे हमने चुना है फिल्म जरा हटके जरा बचके से, अरिजीत सिंह और सचिन जिगर के स्वर और संगीत सचिन जिगर का।

0: अरिजीत सिंह के गाए जरा हटके जरा बच के फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 को होने को हैं। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार News@9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय

0: हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हिंदू कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य

0: मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।

0: है अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
3: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit.

लव, खत और किताबों की क्या बात कहें। जब वो खुद आया तो उसके आने की आहट भी न हुई और वो यूं दिल में उतरता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अश्रोता लीजिए सुनिए पंकज उदास के स्वरों में एक और खूबसूरत और नायाब गजल।

पंकज उदास की गाई इस खूबसूरत नज़्म के साथ ये आज के सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका के अंतर्गत साहित्य भारती, संस्कृति भारती, चित्र भारती या विज्ञान भारती और युवा भारती।

पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं।

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था ये।

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए

0: दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक टिक टिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई

0: एक्स्ट्रा क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म। क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों

या दुख में, परिवार के साथ हूँ या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हूँ या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से, अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए, हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुन

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: are going to broadcast a classical vocal performance by Dr. Vivek Karmahe.
1: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
0: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंडकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
0: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels.

0: नागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lal Jai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: करवहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: Akhil Bharatiya Sangeet ka Akhil Bharatiya karyakram ye sun rahe the aap Akashwani ke Delhi kendra se. हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 11 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
4: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
4: यह मोर आंतरिक कामना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
6: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
3: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय

कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।